0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इसी तरह वो रास्ते से उल्टे जाते थे।

0: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
1: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
0: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए पैलेसेड स्मार्ट ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 seats का ऑप्शन है.
0: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
2: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए.
3: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान.
4: FM 100. लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
5: वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से पेट्रोल पर खुसूसी रियायत, मोटरसाइकिल, रक्षा, चिंची लोडर और दीगर 2 और 3 पहियों वाली मुसाफिर या लोडर गाड़ियों के लिए ₹500 का हफ्तावार डिस्काउंट. अब 15 की बजाय 20 साल पुराने 2 और 3 व्हीलर्स भी इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे, यानी जिनकी रजिस्ट्रेशन जनवरी 2006 के बाद है. जबकि 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के लिए हर 10 दिन में 10 लीटर पर ₹100 फी लीटर रियायत. रियायत हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका अपने मोबाइल मैसेज में REG स्पेस शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस आपकी गाड़ी जहाँ रजिस्टर्ड है उस सूबे का पहला हर्फ, यानी इस्लामाबाद के लिए I, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए A, गिलगित बल्तिस्तान के लिए G, सिंध के लिए S, पंजाब के लिए P, खैबर पख्तूनख्वा के लिए K, बलूचिस्तान के लिए B, स्पेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखकर 9771 पर मुफ्त SMS करें. रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद फ्यूल पंप जाने से पहले TOK लिखकर 9771 पर मुफ्त भेजें, जिस पर आपको टोकन नंबर मिलेगा जिसे पंप पर दिखाकर आप सस्ता पेट्रोल हासिल कर सकेंगे. मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट www.pmfuelrelief.pk विजिट करें या QR कोड स्कैन करें.

0: सब मुड़मुड़ के देख रहे हैं.
1: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
0: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
3: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100. बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए. लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
4: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है. तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है. लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें. ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें. ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
5: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है. और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है. ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुन या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है. इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है. अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं. जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें. अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें. अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स. डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है. बर वक्त और पेश के इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम PTA.

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: 11.9% 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
3: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
1: 11.99%
5: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
6: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
7: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
8: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त, 1 पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
10: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
11: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
12: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
11: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
12: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
11: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 seats का ऑप्शन है।
12: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
11: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
13: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला। जैज 5G।
14: लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
15: उम्रा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्रा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन।
16: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
17: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाए ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: This program is brought to you by
7: Shaukat Khanam, Karachi ki takleef
0: and
18: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja
0: and
19: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja
0: and
18: Tabal family mixture line umrah par jaye
0: and HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
4: and purani gaadi chhodo nayi gaadi ka khwab pura karne chalo kareebi HBL branch chalo ya apply karo online
20: FM 100
21: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान,
20: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे जमिया. और आज क्या दिन है? आज मंडे का दिन है और मोटिवेशन जो है बहुत ज्यादा हाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रस्तों में आ आके और स्कूल रस से गुजर गुजर के मेरी क्या हालत होती है, मैं सोचती हूँ पेरेंट्स की क्या हाल है. और बच्चे जो है वो मतलब सो रहे होते हैं, बाइक से भी सोते हुए जा रहे होते हैं. लिटरली मैं पेरेंट्स को यही कहूंगी कि खुदारा उनको जल्दी सुला दें, मोबाइल से दूर रखें और जल्दी उनको सुला दें, ताकि सुबह जल्दी उठें लोग और बच्चों को शुरू से फजर की नमाज की आदत डालें. अगर एक बेस्ट तोहफा जो अपने बच्चों को आप दे सकते हैं वो है नमाज. ये तालीम वालीम स्कूल व स्कूल पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन नमाज की आदत बहुत ज्यादा जरूरी है. आपके बच्चे बहुत हाई फाई हों, ओ लेवल्स में उनके स्ट्रेट एज आ जाएं, लेकिन अगर वो नमाजी नहीं बने तो ये आपकी एक हार है, राइट? और तो पहले वो बोलेंगे पहले अम्मा अब्बा तो नमाजी बन जाएं, उसके बाद बच्चे. खैर, हम अपने शो का आगाज करते हैं कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. हम पढ़ रहे हैं सूरह अनकबूत का तर्जुमा. अनकबूत का मतलब होता है मकड़ी, और इससे ये मुराद भी होती है कि मकड़ी का जो घर है वो सबसे ज्यादा नाजुक होता है. जरा सी हवा भी उसको जरा सा आप कुछ झटका लगे आप मकड़ी का घर टूट जाता. तो जिंदगी की मिसाल भी ऐसी है, दुनिया की मिसाल भी ऐसी है जैसे मकड़ी का घर. तो आयत नंबर 18 से पढ़ते हैं. आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह पैदा करने की इब्तिदा कैसे करता है, फिर वो उसे दोबारा बनाएगा, बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है. तो फरमाओ जमीन में चल कर देखो कि अल्लाह ने पहले कैसे बनाया, फिर अल्लाह दूसरी मरतबा पैदा फरमाएगा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादर है. और अब अल्लाह इसमें भी आप देखें कि कितनी अल्लाह ताला के लिए पैदा करना, इब्तिदा करना, कोई हो चुका है और फिर दोबारा बनाना भी जो है अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है. तो इसमें यह भी सीखने को मिलता है कि आखिरत बरहक है. हम जब जिंदगी के बाद मर जाएंगे फिर दोबारा हमें उठाया जाएगा और हमसे सवाल जवाब होंगे, पूछा जाएगा कि भाई क्या किया इस दुनिया के अंदर, सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहे. एनीवेज, और हमारा आज का टॉपिक मैं बता देती हूँ जल्दी से. आज का हमारा टॉपिक यह है कि क्या आप एक केयरफुल इंसान हैं या केयरलेस हैं, क्या आप हर चीज सोच समझ के मोहतात अंदाज में करते हैं या फिर आप कहते हैं बस ये देखा जाएगा. और राइट, और फिलहाल हम चलेंगे अपनी बच्चा पार्टी की तरफ. तो कैसी है बच्चा पार्टी? आई नो मंडे के दिन बिल्कुल मूड नहीं होता ना स्कूल जाने का. खैर, स्कूल जाने का मूड जो है ना बेटा ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे को भी नहीं होता, सिर्फ उस दिन मूड होता है स्कूल जाने का, स्कूल में कोई पार्टी हो रही हो और आपका कोई टिफिन डे हो, राइट? और आई होप कि आपने होमवर्क कर लिया होगा. होमवर्क मैं आपको बताऊं फ्राइडे को ही कर लेना चाहिए ताकि टेंशन फ्री गुजरे आपके सैटरडे संडे. तो ये बात बड़ी जरूरी है. खैर, आप टेंशन ना लें, आई एम श्योर कि हमारे पक्के दोस्त वाले बच्चे बहुत प्यारे हैं, उन्होंने होमवर्क भी कर लिया होगा और सुबह सुबह नाश्ता भी कर लिया होगा, है ना? नाश्ता इज सो इम्पोर्टेंट, है ना जी? आपको बोल रही हूं मैं, नाश्ता है ना, चाय शाय बड़ी जरूरी चीजें हैं ये सारी. ओके, और वो प्यारे हमारे बच्चे पार्टी कैंग के हैं अरमान, अहमद फराज, दाशान, यजान, इब्राहिम, अबीहा, आयान, इनाया, अहमद अली, मोहम्मद अली, आयजा, आयरा, उनीम, शेर अली, सिद्रा, नहीम, इकरा, जोहा, उमर, अहमद, सैयदा उम्मे हानी, सैयदा हमना, सैयद उबैद रजा, हरीम फहद, अब्दुल हन्ना, नबीहा, आजर फरान, जैन, शोएब, सुदेश, आमना, हमाद, वायस, हानिया, हूरिया, अहमद, नबीहा, नबीरा, सुबहान एंड समीहा एंड फातिमा उमर, हसन शहरियार, मूसा, ईसा, अरमिश, अलिशबा रिजवी, नूरुलैन, उमर शामीर, अब्दुल मुगनी, महरीन, मोहम्मद अहमद, अनाबिया, अब्दुल हादी, अब्दुल वासी, अब्दुल रहमान, असदिन, उर्वा, रूहान एंड रायान, अनाबिया, अब्दीश, हमदान, अजलान, अलीशा, जिया, आयरा, जिया, फसी, मुर्तजा, दनीन एंड राइहा चलानी, नुसरत एंड जाविया, जोरेज एंड राइद, कबीर, मिना एंड मशाल. तो इन प्यारे बच्चों के लिए हमारा नेक्स्ट सॉन्ग है. और कि अगर कोई मसला हो जाए, अगर आप केयरलेस हो जाओ, आपसे होमवर्क टाइम पे ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ आराम से बोलना चाहिए सॉरी.

0: बज्जो।
1: ये
0: स्वेटर कब रेडी होगा?
1: मतीन, थोड़ा वक्त और लगेगा। सॉरी बच्चों, आज आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। एक लफ्ज है सॉरी, जिसको हम सब बोलने से डरते हैं।
0: अगर हमारी किसी गलती से कोई नाराज हो जाए तो हमको फौरन सॉरी कहना चाहिए। अगर स्कूल में टीचर नाराज हो जाए तो
2: फौरन सॉरी कहना चाहिए। और अगर आपसे आपके दोस्त का कोई खिलौना टूट जाए तो
3: फौरन सॉरी कहना चाहिए। और अगर गलती से कोई सारी जलेबी खा जाए तो
4: फौरन सॉरी करना चाहिए।
1: तो बस याद रखो, अपनी गलती को मान लेने में कोई हर्ज नहीं,
2: बल्कि ये काम तो सिर्फ बहुत बहादुर लोग ही कर सकते हैं।

0: 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
4: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस.
5: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
4: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
5: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
4: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
5: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
4: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
0: This program is brought to you by
6: Shaukat Khanum Karachi ki takleef
0: and
7: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
0: and
8: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
9: Tabal family mixture laye umrah par jaye
0: and
1: HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL
0: and
10: purani gaadi chodo nayi gaadi ka khwab pura karne chalo kareebi HBL branch chalo ya apply karo online.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: इंडस्ट्रियल एरिया ब्रूक सुरंग की जानेब, उस पर भी ट्रैफिक का इस वक्त कुछ दबाव बढ़ गया है, लिहाजा वो तमाम लोग इन रास्तों पर सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए FM 100 पाकिस्तान।
1: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं FM 100 पे और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आजय समीहा। और आज हमारा टॉपिक ये है कि आप क्या एक केयरफुल इंसान है या आप केयरलेस इंसान है। और आई एम श्योर कि अब आप पहले केयरलेस थे और अब आप बहुत ज्यादा केयरफुल हो गए। अच्छा, और हमारे पास आबिद अमीर और आमिर जफर सिद्दीकी का मैसेज आया हुआ है। आबिद अमीर कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, न्यू ताज़ा ताज़ा गन्ने के जूस जैसे हफ्ते के आगाज में खुश आमदीद सैम। इतनी सारी वीकेंड की इंजॉयमेंट और मंडे की सुबह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से बच्चों को अलविदा करने के बाद और जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। आपको एक मजे की बात ही बतानी थी, पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी से आपको बता दूं। बस सस्पेंस क्रिएट करना तो जरूरी आबिद अमीर के हैं, बता दें अब क्या करना है, इसके अंदर छुपा के भी आप रहे, छुपा तो पाई नहीं गए आप। आमिर जफर सिद्दीकी कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आजकल हर चीज से मोहताज रहना चाहिए, लोग भी दोस्ती करते हैं सिर्फ अपना काम निकालने के लिए, सो नीड टू बी केयरफुल विद एवरीवन। काम निकालते ही अपना फेस फेर लेते हैं, बॉटम लाइन कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। केयरलेस पीपल को लोग वैसे भी पसंद नहीं करते। हाँ जी, केयरलेस लोग हैं मगर बहुत ज्यादा केयरफुल, खासतौर पर जो बहुत ज्यादा पैसों के साथ केयरफुल और कंजूस लोगों को भी नहीं पसंद करते। लेकिन हाँ, केयरलेस लोग जो हैं वो फिर बहुत नुकसान उठाते हैं जिंदगी में, जो पैसों के साथ केयरलेस होते हैं, जो आराम से लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, जो अपनी सेहत के बारे में केयरलेस होते हैं कि जी सब कुछ खा लो, अल्लाह मालिक है, हजम हो जाएगा। तो हर चीज में अल्लाह मालिक, जो हम जिस चीज का फैसला जिम्मेदारी नहीं कर ले पाते, अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं, जो है क्या हुआ अगर 7-8 बच्चे हो गए, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। और इसके अलावा भी मतलब कुछ भी खा लो, हाँ जी बस अल्लाह मालिक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह के वो खा लो गुलाब जामुन तो कुछ नहीं होगा, तो वैसे नमाज ना पढ़े लेकिन फिर गुलाब जामुन के वक्त अल्लाह याद आ जाए उनको, तो ये फिर उनकी अपनी सोच है। लेकिन केयरफुल रहना और कम बोलना, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसका आपको अफसोस नहीं होता कि आप ज्यादा केयरफुल हो गए थे, आपने डबल डबल चेक कर ली चीजें घर से निकलते वक्त, तो इसका आपको अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर आप केयरलेस होंगे, क्या बोले हाँ हाँ सही है सब ठीक है सब ठीक है, तो उसका आपको अफसोस हो सकता है। खवातीन इस मामले में ज्यादा केयरफुल होती हैं, बल्कि वो कुछ ज्यादा ही ज्यादा है, वो निकल ही नहीं पाती घर से, हर चीज डबल चेक करी होती है, गैस बंद है, लाइट्स ऑफ है और सब कुछ ऑफ, इस चक्कर में कभी कभी अपने आप को भी लॉक कर लेती हैं। लेकिन ये कि केयरफुल होना आई थिंक इज बेटर, स्पेशली इन कराची में रहना ऐसा है जैसे कि आप एक जंग लड़ रहे हैं, यहां आपकी आंख बची, यहां आप केयरलेस हुए और वहां आपकी चीजें गायब, आप लॉक लगाना भूल गए अपनी गाड़ी को, फिर देखें यहां तो लॉक लगी हुई गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, यहां तक कि जो शीशे हैं साइड के वो तक लोग ले जाते हैं जो है, तो यहां पे कुछ भी सिवाय अल्लाह के और आपकी अपनी अकल और समझ बूझ के कोई भी चीज आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एवरीवेयर, ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरीवन, हर कोई आपको जो है ना बस तक काटने को लगा है, भले वो आपके बच्चों का स्कूल है, भले आपका अपना ऑफिस है, हर कोई ऐसा है कि बस इससे ना कोई किससे कैसे फायदा उठा सकता है। तो ये एक आपको जंग है जिसके अंदर आपको कदम कदम पे सोचना है, समझना है लिटरली, क्योंकि कोई आपको लगता है गवर्नमेंट आपका ख्याल करी है, बिल्कुल नहीं ख्याल करी है, अगर ख्याल करी होती तो आज हम थोड़े सांस ले रहे होते। और मैं आपको बता दूं कि एक अहम खबर जो रोजाना आती है अखबार में कि पेट्रोल 389 तक पहुंच गया, बोले एक साथ ही 500 कर दो, रोजाना की टेंशन क्या दे रहे हो, एक साथ ही करो, साथ ही मार दो हमें, है थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को मारे। और आपको क्या लगता है इतने सारे पेट्रोल की कीमत होने के बावजूद क्या महंगा वो लोगों की गाड़ियां कम हो गई हैं रोड में, हैं नहीं, मैं बता रही हूँ खास में कराची के मामले में बता रही हूँ, 500 भी कर दो ये उसी तरह निकलेगी, इसी तरह निकलेगी, उसी तरह पेट्रोल भरवाएगी, ये एहतजाज कुछ नहीं करना, इसने किसी बात पे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि हम सबको ऑफिस जाना है और अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, एहतियात ये हम कुछ नहीं कर सकते इस तो क्या फायदा टेंशन लेने का, राइट? आप टेंशन ना लें,

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur
1: bhul ja. 11.9% 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.99%।
4: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
5: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
4: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है।
5: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
4: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
5: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
4: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
5: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: 100 FM।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: शौकत खानम, कराची की तकलीफ
0: एंड सर सब नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा एंड
10: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
11: कबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
6: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
12: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा, तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्मे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
13: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
14: FM 24/7 365
15: FM 24/7 365। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
16: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
15: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
17: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
18: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
15: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
17: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
18: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
17: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
15: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
18: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
15: आइए वेट से आगे का सोचें।
13: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा। आज हमारा टॉपिक ये है कि क्या आप एक केयरफुल इंसान हैं या फिर आप एक मस्त मलंग केयरलेस इंसान हैं। और आप लोगों के पैगामात मेरे पास आ रहे हैं। या हमीद का मैसेज आया है और मंजूर हुसैन मलिक साहब का मैसेज आया है। या हमीद कह रहे वेल आई एम केयरफुल लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेता, कुछ मामला में केयरफुल रहना पड़ता है लेकिन सर पे सवाल नहीं करता, बस अपनी प्रायोरिटी सेट करना चाहिए। कुछ सही बात है। और मंजूर हुसैन मलिक साहब का मैसेज आया कि अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, उम्मीद करता हूं आप सब खूबसूरत प्यारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज के टॉपिक के हवाले से यही कहूंगा कि मैं बहुत केयरफुल हूं, बाकी अल्लाह ताला और मौला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हमारी दुआ अल्लाह ताला मौला आप सब खूबसूरत प्यारे दोस्तों को हमेशा खुश हो खुर्रम व सलामत रखे। दुआ का तलबगार एम एच मलिक। तो आपकी तबीयत कैसी है वैसे मंजूर हुसैन मलिक साहब? ठीक ठाक हैं, अपनी तबीयत का ख्याल रखें वैसे आप। इसके बारे में इंसान को बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, अपनी सेहत के बारे में बहुत केयरफुल होना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए। और सबसे जरूरी चीज जो मैंने सीखी है अभी लाइफ के अंदर है बहुत देर में लेकिन कोई बात नहीं कि नींद का अपना बहुत ख्याल करना चाहिए कि जल्दी सोना और रात की नींद, इसका ये बहुत कीमती सरमाया है आपकी नींद। आपको नहीं पता योर ब्रेन नीड्स टू स्लीप। और कुरान में भी है अल्लाह ताला ने रात को हमारी राहत के लिए बनाया और दिन को काम के लिए बनाया। देखिए हमारी राहत क्या है? हमारी राहत यह है कि जी हम बस अपने बिस्तर पे लेट के मोबाइल देखें, ये हमारी अल्टीमेट राहत है, हमारी अल्टीमेट तफरी है ये। और ये टेलीविजन देखें जो भी स्क्रीन देखें, और इससे क्या हो रहा है कि हम सो नहीं पाते बिकॉज ऑफ कोर्स दैट दिस कॉन्स्टेंट लाइट इज गोइंग इन योर आईज एंड यू कांट स्लीप, क्योंकि सोने के लिए अंधेरा चाहिए जो हमारी होता ही नहीं है। आई डोंट थिंक के कराची के अंदर इतना रोशन शहर है, इवन घरों के अंदर भी हम पिच डार्कनेस में नहीं सोते और वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है और जाहिर है सुबह सुबह आप देखेंगे बच्चे बेचारे नींद में जा रहे होते हैं, आपने क्या उम्मीद रखनी है उन बच्चों से जिनको रात को पूरी नींद नहीं मिली, क्या परफॉर्म करेंगे वो स्कूल के अंदर। और बच्चों के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो पेरेंट्स को मैं ये बोलूंगी, खासतौर पर मम्मीज को मैं ये बोलूंगी कि ये जो है ना ये अपना दिन बहुत जल्दी हमें रैप अप करना चाहिए रात में, और ये जो रात की चीजें हैं। और हस्बैंड्स को गुजारिश करूंगी खुदा के लिए अपने रिश्तेदारों को बोलें कि एक टाइम के बाद घर पे ना आए और छुट्टी वाले दिन आए वो भी संडे को भी, संडे नाइट को भी ज्यादा देर तक नहीं बैठे क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है। तो प्लीज ख्याल करें। मुझे याद है कि मेरी दोस्त आई हुई थी इंग्लैंड से और अपने बच्चों को लेके, और मैं उसके बच्चों से काफी दफा मिल ही नहीं पाई क्योंकि वो अपने बच्चों को 7 बजे सुला देती थी कि जी उसका उनका बेड टाइम 7 होता है। मैं कहती हूँ है भाई 7 o'clock कौन सोता है, मतलब मैं पागल, मतलब 7 बजे कौन सोता है। और लेकिन नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट अपने बच्चों की स्लीप टाइम के बारे में थे। खैर आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका स्लीप टाइम बढ़ता जाता है 8-9, लेकिन हमारे बच्चे माशाल्लाह 12 बजे भी आपको बच्चों के कमरों से आवाजें आ रही होंगी, बाहर खेलने होंगे बच्चे, क्योंकि 12 बज गए, कल स्कूल भी हो तो जा लेके बच्चों ने सोना है। बच्चे कब सोएंगे? जब पेरेंट्स सोएंगे ना, उनके पेरेंट्स भी जाग रहे हैं। और मुझे और ये पूरा चाय का कल्चर चल रहा होता है हमारे यहाँ कराची के अंदर, लिटरली दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। हाँ वीकेंड्स पे आप भले पूरी रात जागें, सुबह के 4-4 बजे तक बैठे रहें ख्वारों की तरह ढाबों पे और नाश्ते करते रहें, लेकिन वीकडेज पे जब आपको सुबह ऑफिस जाना है प्लीज अपनी नींद का ख्याल रखें, बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बने क्योंकि आपको ही देख के आपका बच्चा सीखेगा। अब्बा बाहर घूम रहे हैं अपने दोस्तों के साथ 2-2 बजे तक, तो बच्चे ने भी नहीं सोना है ना फिर। तो जरूरी यही है कि आप अपनी नींद का बहुत ख्याल रखें। आप अगर आपको मेरी बात पे यकीन वैसे होना तो चाहिए लेकिन अगर आप जो है जल्दी सोएंगे आपके दिमाग के लिए, आपकी वैसे सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और ज्यादातर बीमारियां इसी वजह से हो रही है, ओवर ईटिंग भी इस वजह से होती है जब रात को हम नींद पूरी नहीं करते हमारी, तो वी टेंड टू ओवर ईट, और जब ओवर ईटिंग होती है तो फिर आपका वजन बढ़ता है, वजन के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। तो ये पब्लिक सर्विस मैसेज गिवन टू यू बाय आरजे समिया। और अगर आप भी अपनी जात के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि आप ज्यादा मोहतात हैं, केयरफुल हैं, या फिर आप एक केयरलेस इंसान हैं, केयरलेस / यूजलेस, तो हमें बताएं बता ही दें, हम सबको बता देंगे। तो हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या आरजे समिया इंस्टाग्राम पे। और नसीन जी आप कैसी हैं, कहाँ हैं नसीन जी आज आप?
اور حکیم شکیل صاحب کو میں بار بار تھینک یو بولوں گی. حکیم شکیل صاحب اگر آپ سن رہے ہیں خاموشی سے تو آپ کا بڑا شکریہ ہے. اور حکیم شکیل بھی بڑے کیئرفل قسم کے انسان ہیں, بہت طریقے سے اپنی چیزیں آہستہ آہستہ کرتے ہیں. اور ایک اور طریقہ بھی ہے دوستو ہمیں میسج کرنے کا, کہ اپنے میسج باکس میں چاہیے ٹائپ کیجیے KHI اسپیس آپ کا نام آپ کا پیغام اور اس کو بھیج دیں گے آپ 3636 پر, اور ہم آپ کے لیے پلے کریں ابھی یہ ٹریک.

0: 11.99%.
1: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
0: 11.99%।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
5: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
6: जहां 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
7: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
8: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
9: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
11: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
12: लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
13: उमरा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उमरा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन।
14: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाए ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रूपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
15: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
16: वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से पेट्रोल पर खुसूसी रियायत, मोटरसाइकिल, रक्षा, चिंची लोडर और दीगर 2 और 3 पहियों वाली मुसाफिर या लोडर गाड़ियों के लिए 500 रूपए का हफ्तावार डिस्काउंट। अब 15 की बजाय 20 साल पुराने 2 और 3 व्हीलर्स भी इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे, यानी जिनकी रजिस्ट्रेशन जनवरी 2006 के बाद है। जबकि 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के लिए हर 10 दिन में 10 लीटर पर 100 रुपए फी लीटर रियायत। रियायत हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका अपने मोबाइल मैसेज में REG स्पेस शिनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस आपकी गाड़ी जहाँ रजिस्टर्ड है उस सूबे का पहला हर्फ यानी इस्लामाबाद के लिए आई, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए ए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए जी, सिंध के लिए एस, पंजाब के लिए पी, खैबर पख्तूनख्वा के लिए के, बलूचिस्तान के लिए बी, स्पेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखकर 9771 पर मुफ्त SMS करें। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद फ्यूल पंप जाने से पहले TOK लिखकर 9771 पर मुफ्त भेजें, जिस पर आपको टोकन नंबर मिलेगा जिसे पंप पर दिखाकर आप सस्ता पेट्रोल हासिल कर सकेंगे। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट www.pmfuelrelief.pk विजिट करें या QR कोड स्कैन करें।
17: This program is brought to you by
18: Shaukat Khanum, Karachi ki takki
19: and Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
20: and Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
19: and
21: Tabal family mixture laye umrah par jaye
22: and HBL Freedom Account jahan khab वहाँ HBL
23: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
24: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
25: FM 247365

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: 11.9% 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
2: 11.99%
5: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी तीन दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: शौकत खानम, कराची की तकलीफ
8: एंड सरसब्स नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
1: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
8: एंड
10: कबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
11: ख्वातीनों हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में जायद कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है, जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घरदेव से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखें ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़िम एक कौम, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking, aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: This program is brought to you by
3: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: facebook.com/fm247365
4: fm247365

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: 11.9% 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99% 100 FM।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस

0: 6:11 AM. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
3: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा। बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
4: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
0: This program is brought to you by
4: VR Telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: Like us on facebook.com/FM247365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: This program is brought to you by
2: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: It's 12 noon. This time check is brought to you by HPLSI Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. This program was brought to you by
1: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
2: Committee chalana bhi ek alag hi tension hai. Kisi ka cash nahi hai. तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.

लेकिन ये कोई छुट्टी का दिन था तो चाहे गर्मी हो सर्दी हो खजा बहार जो भी मौसम हो भाई छुट्टी के दिन को ना एंजॉय जरा ज्यादा ही किया जाता है आम दिनों के बनस्बत। तो कैसा गुजरा आपका कल का दिन ये भी जानेंगे, कैसा चल रहा है आपका आज का दिन ये भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज करना जो कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ। तो चलें जी लेट्स बिगिन।

यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और अब जबकि बाकायदगी से आगाज हो चुका है तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम आपको बताएंगे तरीका कार कि कैसे आप ही बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो उसके लिए आपने जाना है अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में, की या ट्राई लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप करना है और आपने इसे सेंड कर देना है 3636 पे। साथ ही साथ आप जो है वो आरजे फातिमा खान का ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई आप सबका जो है वो दिन कैसा गुजरा, क्योंकि कल छुट्टी का दिन था और छुट्टी का दिन जो है वो बड़ा स्पेशल टाइप का दिन होता है। तो कैसा गुजरा भाई, कहीं आना जाना हुआ, घर पे रहे, बहुत सारे काम थे या फिर गर्मी की वजह से कहीं निकले, क्योंकि भाई गर्मी इज बैक इन KHI। अच्छा, गर्मी वापस क्यों आ गई है, इतना ज्यादा दर्जा हरारत क्यों है कराची का, इस हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि गर्मी तो हमारे प्रोग्राम का मौजू होता ही है। गर्मी नहीं होता बल्कि मौसम हमारे प्रोग्राम का मौजू होता है जिस पर हम बात कर रहे होते हैं और आपको बता रहे होते हैं कि भाई मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल क्या कह रही है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज का हमारा सवाल यह है कि जिंदगी में क्या ज्यादा मैटर करता है आपके अकॉर्डिंगली, लक या हार्डवर्क? आपको क्या लगता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो क्या है? कुछ लोग लकी होते हैं, ऐसा लगता है हमें कि भाई उनके काम जो है वो बगैर हार्डवर्क के चल रहे हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं इसीलिए उनको वो चीज मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि लाइफ में सबसे ज्यादा क्या चीज मैटर करती है, लक या हार्डवर्क? आज इस पर होगी हमारे प्रोग्राम में बात, तो अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सी चीज मैटर करती है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस अंटिल एंड अनलेस। मैं सोच रही हूं कि क्यों ना हम एक और ट्रैक की जानिब जाएं और ट्रैक के बाद जो है वो हम वापस आते हैं। तो ठीक है जी, अभी हम ट्रैक की जानिब जा रहे हैं क्योंकि आपको देते हैं सोचने का मौका कि सोचें और सोचकर हमें जरूर बताएं। जब तक शामिल करते हैं ट्रैक और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

ऑल राइट जी, सो वी आर बैक और हम आ चुके हैं वापस, और साथ ही साथ हमने आपसे सवाल पूछा था और सवाल के साथ साथ आपको सोचने का मौका भी दिया था कि जी हाँ सोचें और हमें बताएं कि जिंदगी में क्या ज्यादा मैटर करता है, लक या हार्डवर्क। आपका क्या बिलीव है कि क्या चीज जो है वो जिंदगी में सबसे ज्यादा मैटर करती है। नसीर खोसू ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और कहते हैं कि जी मेरे ख्याल में जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून मैटर करता है, पैसा और शोहरत अपनी जगह है लेकिन अगर दिल में इत्मीनान नहीं तो सब बेकार है, इसलिए अच्छे लोग, अच्छी नीयत और वालिदैन की दुआएं ही असल कामयाबी हैं। बेशक ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सुकून मैटर्स अ लॉट इन एवरीबडी लाइफ। सुकून है ना तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है, और सुकून नहीं है तो आपकी जिंदगी जो है वो बड़ी तकलीफदेह है। तो सुकून तो बहुत मायने रखता ही है, लेकिन यहां पर हम लक और हार्डवर्क की बात करें कि वो क्या लगता है आपको कि ज्यादा मैटर कौन करता है। या तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर लाइफ, व्हाट डू यू बिलीव इन इट, कि भाई बहुत सारे लोगों का हमें लगता है कि बहुत लकी है, एक्चुअली में कुछ लोग वाकई में बहुत लकी होते हैं कि उनके जो बहुत सारे काम है ना वो उनकी लक के थ्रू जो है वो हो जाते हैं। बहुत सारे लोग उन चीजों को हासिल करने के लिए बहुत हार्डवर्क करते हैं और अल्लाह ताला तो खुद ही बात कहता है कि जी कभी भी किसी की मेहनत जाया नहीं जाती। अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, आपको उससे मजीद बेहतर कुछ मिल जाएगा। तो ये है कि आपका हार्डवर्क कभी जाया नहीं होता, लेकिन आपका क्या मानना है कि सबसे ज्यादा चीज क्या मैटर करती है, हार्डवर्क या फिर आपकी लक? तो आपका दिल क्या कहता है कि एक्चुअली में सही जवाब आपके नजरिए में क्या है कि इंसान को हार्डवर्क करना चाहिए या अगर उसकी लक अच्छी है तो चीजें खुद ब खुद जो है वो अच्छी हो जाती हैं। तो आपका बिलीफ क्या कहता है हमें जरूर बताएं। आज है 21st of September, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर आज मेरे लिसनर्स में से किसी की सालगिरह है तो भाई आपको इस सालगिरह का दिन बहुत मुबारक हो, या फिर कोई और खास दिन है तो वो भी आपको बहुत मुबारक हो, बिकॉज आज 21 है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस। सवाल पर जरूर गौर करें और अपना जवाब दें कि जिंदगी में क्या ज्यादा मैटर करता है, लक या हार्डवर्क। और इसका जवाब देने के लिए आप हमें 3636 में मैसेज कर सकते हैं, या फिर RJ फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी आप कमेंट कर अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अनदर ट्रैक, और हम एक और ट्रैक की जानब जाते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद और आपको सुनाते हैं जुनैद जमशेद की आवाज़।

Yes, my friends, so I am back again. मैं आ चुकी हूँ वापस. सवाल भी हमने आपसे पूछ लिया है कि जिंदगी में क्या ज्यादा मैटर करता है, आपको लगता है कि लक या हार्डवर्क. तो आपके लिए सही जवाब क्या है हमें जरूर बताएं और अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि वाकई में सबसे ज्यादा जो है वो क्या चीज मैटर करती है जी, लक या फिर हार्डवर्क. तो जो भी आपकी नजर में सही जवाब है जो आपको लगता है कि दिस मैटर्स अ लॉट, तो हमें जरूर बताएं 3636 पर या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर. चलिए जी, तो अब बात कर लेते हैं जरा मौसम के हवाले से, जो कि कराची में अचानक से एकदम से वक्त बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं. तो कराची के नसीब में मजीद गर्मी. जी हां, कराची वालों, जो सिस्टम कराची से दूर जा रहा था वो यू टर्न लेकर दोबारा वापस आ रहा है. जी हां, वो जो है वो वापस आ रहा है, जिसके जेरे असर दोबारा कराची में समंदरी हवाएं मुतासिर होंगी और इतवार से बुध तक कराची में एक बार फिर से तेज गर्मी और हब्स का इम्कान है और इस दौरान हीट इंडेक्स 42 से 44 डिग्री तक बढ़ सकता है. जी हां, और कराची वालों, आज से कराची में जारी गर्मी में मजीद इजाफा होगा और फिर से यानी कि टुडे टिल वेडनेसडे तक कराची में हीट वेव जैसी सूरत हाल होगी और हीट इंडेक्स 44 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ सकता है. कल दोपहर के बाद कराची के मुजफाती इलाकों में बादलों की तशखीस का इम्कान है, जिससे मुजफाती इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा और शहर के चंद इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है. ये शदीद गर्मी कराची में 2 से 3 दिन तक जारी रहेगी. येस एवरीबडी, सो वी हैव अ ट्विस्ट इन दिस मौसम, बिकॉज कराची में जो सिस्टम आया था, जो बस कराची में आया और गर्मी, अच्छा कोई सिस्टम आए या ना आए लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं ना, वो जरूर कराची में आते हैं. ये एक कराची की खास तरीन बातों में से एक बात है कि जी हां, कुछ आए या ना आए लेकिन गर्मी जरूर आएगी. तो एग्जैक्टली गर्मी बिल्कुल आई और ये सिस्टम ने भी एक टर्न ले लिया, यू टर्न लेकर ही आ रहा है, लेकिन कराची के मजफाती इलाकों में बारिश की पेशनगोई मौजूद है आज दोपहर से. लेकिन अभी जो गर्मी है ना कराची में, ओ माई गॉड, दिस इज टू मच, और हम एक्सपीरियंस करेंगे मजीद 2 दिन और, यानी कि आज मंडे है, टिल वेडनेसडे गर्मी की शिदत बरकरार रहेगी. इस वक्त कराची का टेम्परेचर 42 है, यानी कि रियल फील्स लाइक इज 42 एंड एक्चुअली में 39 है. और आपको अंदाजा हो सकता है, जो जो लोग इस वक्त मुझे रास्ते में सुन रहे हैं वो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है. और इतनी गर्मी के बारे में जब मैं बात करती हूं तो मुझे लगता है कि लोगों को और ज्यादा गर्मी लग रही होगी, बिकॉज ऑब्वियसली जिस बारे में भी हम ज्यादा सोचते हैं ना, वैसा आपके साथ होने भी लगता है. तो अब मैं ये सोच रही हूं कि इतनी गर्मी के बारे में मैंने बात करी है तो ऐसे में क्या ट्रैक लगाऊं जिसे सुनने के बाद आप लोग थोड़े कूल हो जाएं और थोड़ी कम गर्मी लगे. तो ऐसा कोई ठंडा ठंडा गाना तो वैसे बजाए मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा इस गर्मी में ठंडे ठंडे गाने जिसे आप सुनने के बाद मजीद फ्रेश फील करें. तो फिलहाल हम आतिफ असलम की आवाज आपको सुनाते हैं और आते हैं वापस. तो यह है मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल.

0: Yes, everybody. So 3636 पर आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर हमसे कनेक्ट हो लीजिए और अपनी राय हमसे जरूर शेयर कीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज जिंदगी में सबसे ज्यादा मैटर करती है, लक या हार्ड वर्क। तो आपका स्ट्रांग बिलीफ किस बात पर है और आपका मानना यह है कि ये चीज ज्यादा मैटर करती है, हमें जरूर बताएं क्योंकि हम कर रहे हैं आपके मैसेजेस का इंतजार। और हमारे पास रशीद खान का भी मैसेज आ चुका है। एक रशीद खान, आपने हमारे सवाल से रिलेटेड जवाब नहीं दिया है, तो आपने क्या हमारा सवाल सुना नहीं था? अगर नहीं सुना था तो आपको बता देते हैं कि आज का हमारा सवाल यह है कि जिंदगी में क्या ज्यादा मैटर करता है, लक या हार्डवर्क। आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज जो है वो जिंदगी में सबसे ज्यादा मैटर करती है, हार्डवर्क या फिर लक? तो जो भी आपको लगता है कि सही जवाब है हमें जरूर बताएं 3636 पर या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। अंटिल एंड अनलेस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस, चलते हैं ब्रेक की जाने बातें वापस ट्रैक के साथ।
1: इट्स 12:45 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय फीनिक्स बैटरीज।
2: फीनिक्स लगा और भूल जा, फीनिक्स लगा और भूल जा।
3: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
4: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी

0: 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takmeer.
3: And Step School se foundation ho strong. Call now at 0311117837.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Afternoon.

ओके जी, सो प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत हो गई काम, यानी कि एक अदर ट्रैक हमने आपको कर दिया है डेडिकेट. सज्जाद अली की आवाज आज हमने आपको डेडिकेट की है. और साथ ही साथ भाई लुकवल का भी मैसेज आ गया है. लुकवल कहती हैं, जी अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी हैं? कहती है मुझे लगता है और मैंने देखा भी है कि ज्यादातर लक ज्यादा मैटर करती है. ओके ठीक है भाई, लुकवल की ये राय है, बिल्कुल हमने इसे नोट कर लिया है. लुकवल को लगता है कि लक ज्यादा मैटर करती है. बिल्कुल जी, आपकी अपनी अपनी राय हमें जरूर बताएं. कहती हैं आज लंच में आलू गोभी और पुलाव है. ओ माई गॉड, आई लव आलू गोभी, मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है आलू गोभी का. और साथ ही साथ कहती हैं कि जी आज हमारे यहां सुबह 8:40 से लाइट नहीं है. ओ माई गॉड, वेरी वेरी सैड फॉर यू भाई. सुपर डुपर गर्मी इस वक्त शहर कराची का हिस्सा भी बनी हुई है, ऊपर से लाइट नहीं है, तो बहुत पेनफुल सिचुएशन है. लिटरली रियली रियली सैड फॉर यू यार, ये जो सिचुएशन है ना ये बहुत पेनफुल है, क्योंकि ना तो लाइट है और गर्मी बहुत है, तो इस सूरत हाल में करें तो करें क्या, वेरी पेनफुल. हमारी दुआ है कि इस शो के दौरान ही आपके घर की लाइट आ जाए और आप वापस खुश हो जाएं. और राइट जी, सो प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत तो कायम हो गई है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा होता है एक अदद इम्पोर्टेंट तरीन सवाल, और वो सवाल ये होता है कि जी आपके लंच में क्या है, क्या पक चुका है, क्या पकाने जा रहे हैं, क्या रात में कुछ बड़ा स्पेशल बनाया था और आज उसे लंच के लिए रख दिया है. और ये खवातीन के लिए ना एक बहुत बड़ा रिलीव होता है जब रात का कोई मजे का खाना बच जाए और वो लंच में दे दिया जाए या खा लिया जाए, तो उन्हें लगता है कि भाई एक टाइम की ना वाकई में छूट मिली है. तो ऐसे ही कुछ आपके लंच में है या फिर कुछ बनाया है, तो क्या क्या आपने लंच में आप लोग इस वक्त खा रहे हैं हमें जरूर बताएं. और इसे बताने के लिए भी आप हमें 3636 पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर अपनी राय जरूर बताएं कि लक मैटर करती है या हार्डवर्क, और इसी के साथ साथ आपके लंच में क्या है हमें बताएं. हम बड़ा शिद्दत से इंतजार करें आपका लंच जानने के लिए. और साथ ही साथ हम चलते हैं एक अदद ट्रैक की जानिब, क्योंकि जी ट्रैक भी बड़ा जरूरी है और साथ ही साथ जो है वो लंच जानना भी बहुत जरूरी है. तो जब तक आप अपना लंच हमें बता रही हैं, हम सोच रहे हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर ना आपको एक अदद हम ट्रैक सुना देते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के पास.

0: ओके जी, तो रशीद खान ने कहा कि दोनों चीजें मैटर करती है, लेकिन एक्चुअली में ना कुछ लोग बहुत ज्यादा लकी होते हैं और उनकी लक उनको बहुत सपोर्ट करती है, यानी कि उनके केस में ऐसा होता है कि हार्ड वर्क कम रिक्वायर्ड होता है और उनकी लक की बेस पे बहुत सारी चीजें उठाती हैं, लेकिन कुछ लोगों को चीजें मिलती जरूर है, लेकिन द रिक्वायरमेंट इज हार्ड वर्क एंड बेसिकली और टेक्निकली और एवरी टाइम को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए ना, तो हार्ड वर्क तो जरूरी है, चाहे वो किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए है, चाहे वो पढ़ाई के लिए है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए, इनफैक्ट कुकिंग के लिए भी है, तो अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो कैसे बनेगा। हाँ, बहुत कम ऐसा होता है कि तुक्के में आपका काम चल जाए, तो वहां आप उसे तुक्का भी कह सकते हैं और लग भी कह सकते हैं, लेकिन हार्डवर्क रिक्वायर्ड होता है। जरीनूर का भी मैसेज आया, कहती हैं सलाम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूं जी। कहती हैं आज खाने में चिकन कढ़ाई है और तुरई है, वाओ लवली। एक वेज और दूसरा नॉन वेज, ये इनके लंच में लाजमी होता है, वेज और नॉन वेज दोनों का ही ख्याल रखती हैं, जबरदस्त हो गया जी। इंजॉय करें आप लोग अपने लंच और बाकी लोगों का भी लंच जानना जरूरी है, तो जल्दी जल्दी आप लोग बताएं कि भाई इस वक्त आपके लंच में जो है वो क्या क्या है। लक और हार्डवर्क पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वक्त भी बहुत तेज से गुजर रहा है, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। सो मजीद इंतजार ना करें, जल्दी से मैसेज कर हमारे सवाल का जवाब भी दें और आपके लंच में क्या है ये भी हमें जरूर बताएं। हमारे पास साकिब का भी मैसेज आया है, कहते हैं कि लंच में आज बाहर की बिरयानी है, वो भी मसाले वाली। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। बिरयानी शुड बी ऑलवेज मसाले वाली, अदरवाइज बिरयानी मजे की नहीं लगती, ऐसा मेरा मानना है। वैसे पर मैं सफेद चावल आलू और चिकन के साथ खाने का क्या मजा यार, तो मसाला तो मैटर करता है जिंदगानी में। फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक की जाने, बढ़ाते हैं वापस ट्रैक के साथ, तो आपने कहीं नहीं जाना है बिकॉज वी विल बी राइट बैक। तो आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, हार्डवर्क और लक्स रिलेटेड 3636 पर मैसेज करें या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। सो वी विल बी राइट बैक इन फ्यू मिनट्स।
1: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम, कराची की तकलीफ
2: एंड
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
5: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
6: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
7: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
6: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
7: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाए,
5: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचे, वेट से आगे का सोचें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर।

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया. FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.
4: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is FM 100.
6: Come on.

0: your location for maximum music.
1: मंजिल अभी बाकी है और सफर रवा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए सिंध हुकूमत ने जदीद शाहराहों, पुलों और राबिता सड़कों का वसी जाल बिछाया। शाहराहे भुट्टो कराची के सनती इलाकों, बंदरगाहों और मोटरवे M9 को आपस में जोड़ रही है, जबकि 141 से ज्यादा सड़कों और 825 किलोमीटर रोड नेटवर्क्स की बहाली मुकम्मल की गई, जिससे लाखों अफराद की आमदोरफ्त, तिजारत और रोजगार को नई रफ्तार मिली। तवानाई के शोबे में थरकोल मंसूबा सिंध की तरक्की का अहम संगे मील बन चुका है, जहां मकामी कोयले से हजारों मेगावाट बिजली पैदा करके कौमी ग्रिड को मजबूत बनाया जा रहा है। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट, घारो विंड कॉरिडोर और शमसी तवानाई के मंसूबे तवानाई के मुतबादिल जराए को फरोख दे रहे हैं। SPHF दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसके तहत 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दूर अंदेश क़यादत, तरक्की पसंद सोच, अवामी खिदमत के विजन की रहनुमाई में मसरूफ है। हुकूमत सिंध ने जदीद और मुफ्त तिब्बी सहूलियात का मजबूत निज़ाम कायम किया। SIUT, SICVD, JPMC, NICVD के सैटेलाइट सेंटर्स, गंबर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जदीद सहूलियात दस्तियाब है, जबकि सिंध इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ न्यूरोलॉजी में लाखों बच्चों को इलाज फराहम किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने अवामी ट्रांसपोर्ट में जदीद दौर का आगाज किया। पाकिस्तान की पहली EV बस, पिंक बस और खवातीन को मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही है, जो खवातीन को महफूज और बावकार सफर फराहम कर रही है। तालीम के फरोग के लिए हुकूमत सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वेमेन, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी, बेगम नुसरत भुट्टो वेमेन यूनिवर्सिटी सक्खर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और अरोर यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन हेरिटेज, शहीद बेनजीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना और बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स, खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए स्पेशल एजुकेशन, बहाली, हुनरमंदी और खुद मुख्तार जिंदगी के मौके को मजीद वसअत दी गयी। खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन साइट कराची, नूरियाबाद, बिन कासिम और दीगर सनती जोन्स में बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाकर मुल्की और गैर मुल्की सरमाया कारी को फरोख दिया जा रहा है। ज़रई खुशहाली के फरोख के लिए सिंध हुकूमत ने किसान दोस्त मंसूबों का एक जामे सिलसिला शुरू किया। बेनजीर हारी कार्ड के पहले मरहले में तकरीबन 2,98,000 रजिस्टर्ड किसानों को बीज, खाद, सरई अद्वियात, जदीद मशीनरी पर सब्सिडी, रियायती कर्जे, फसल बीमा और कुदरती आफात की सूरत में माली मुआवनत फराहम की जा रही है। पानी के हर खतरे को कीमती सरमाया बनाते हुए लाखों एकड़ जरई अराजी को दोबारा पैदावारी अमल से जोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ मंसूबों, आदाद शुमार या तामीरात की दास्तान नहीं, खुशहाली को सिंध के हर शहर, हर गांव और हर खानदान तक पहुंचाने के अज़्म की रोशन अलामत है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: उम्रा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्रा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन।
3: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उम्रा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्रा पर जाएं।
4: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: ग्यारह अशारिया नौ फीसद।
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%।
7: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
1: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है. और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
0: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
5: शौकत खानम कराची की तकदीर.
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
7: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
8: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
9: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं.
10: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका. जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाए ईवी बाइक जीतने का मौका. साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक. तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
11: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 0311-111-7837.
12: वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से पेट्रोल पर खुसूसी रियायत, मोटरसाइकिल, रक्षा, चिंची लोडर और दीगर 2 और 3 पहियों वाली मुसाफिर या लोडर गाड़ियों के लिए 500 रुपए का हफ्तावार डिस्काउंट. अब 15 की बजाय 20 साल पुराने 2 और 3 व्हीलर्स भी इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे, यानी जिनकी रजिस्ट्रेशन जनवरी 2006 के बाद है. जबकि 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के लिए हर 10 दिन में 10 लीटर पर 100 रुपए फी लीटर रियायत. रियायत हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका अपने मोबाइल मैसेज में REG स्पेस शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस आपकी गाड़ी जहां रजिस्टर्ड है उस सूबे का पहला हर्फ, यानी इस्लामाबाद के लिए I, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए A, गिलगित बल्तिस्तान के लिए G, सिंध के लिए S, पंजाब के लिए P, खैबर पख्तूनख्वा के लिए K, बलोचिस्तान के लिए B, स्पेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखकर 9771 पर मुफ्त SMS करें. रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद फ्यूल पंप जाने से पहले TOK लिखकर 9771 पर मुफ्त भेजें, जिस पर आपको टोकन नंबर मिलेगा जिसे पंप पर दिखाकर आप सस्ता पेट्रोल हासिल कर सकेंगे. मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट www.pmfuelrelief.pk विजिट करें या QR कोड स्कैन करें.
13: This program is brought to you by Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
14: and Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
9: and VR Telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
14: and
15: Tabal family mixture laye umrah par jaye
3: and HBL freedom account jahan khwab wahan HBL.
16: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
1: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
1: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
2: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
1: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
2: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
3: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: सरसब्ज़ नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
6: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
8: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
10: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
11: हमने अपने आप को 3 बार मौत देखी।
12: का टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचूंगा।
13: फिर उन्होंने साडी वीडियो बनाईया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
10: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
14: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
10: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनो बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
15: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।
3: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
4: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
5: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है। और स्पेस भी काफी है।
4: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
5: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
4: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
5: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
4: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
0: एंड
7: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: And
8: we are टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
0: And
9: कबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
0: And
1: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
0: And
10: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
0: facebook.com/fm247365
11: FM 247 365

0: करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
1: सब मुड़ के देख रहे हैं।
2: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
2: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
2: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
0: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे टीसीवी 3 दिन, इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
5: वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से पेट्रोल पर खसूसी रियायत, मोटरसाइकिल, रक्षा, चिंची लोडर और दीगर 2 और 3 पहियों वाली मुसाफिर या लोडर गाड़ियों के लिए 500 रुपए का हफ्तावार डिस्काउंट। अब 15 की बजाय 20 साल पुराने 2 और 3 व्हीलर्स भी इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे, यानी जिनकी रजिस्ट्रेशन जनवरी 2006 के बाद है। जबकि 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के लिए हर 10 दिन में 10 लीटर पर 100 रुपए फी लीटर रियायत। रियायत हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका अपने मोबाइल मैसेज में REG स्पेस शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस आपकी गाड़ी जहां रजिस्टर्ड है उस सूबे का पहला हर्फ, यानी इस्लामाबाद के लिए I, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए A, गिलगित बल्तिस्तान के लिए G, सिंध के लिए S, पंजाब के लिए P, खैबर पख्तूनख्वा के लिए K, बलोचिस्तान के लिए B, स्पेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखकर 9771 पर मुफ्त SMS करें। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद फ्यूल पंप जाने से पहले TOK लिखकर 9771 पर मुफ्त भेजें, जिस पर आपको टोकन नंबर मिलेगा जिसे पंप पर दिखाकर आप सस्ता पेट्रोल हासिल कर सकेंगे। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट www.pmfuelrelief.pk विजिट करें या QR कोड स्कैन करें।
6: This program is brought to you by
7: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
6: and
8: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
6: and
9: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
6: and
10: Tabal family mixture laye umrah par jaye
11: and HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
12: Us on facebook.com/fm247365
13: fm247365
14: evening drive time

0: फीसद, 11.99%।
1: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
0: 11.99%।
3: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाए ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रूपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
5: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
6: सब मुड़ के देख रहे हैं।
7: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
6: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
7: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
6: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
7: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का ऑप्शन है।
6: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
7: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: This program is brought to you by
10: Sir Sub's Nitro Force ko laga aur jeetta ja,
9: and
11: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
9: and
12: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye,
9: and
13: Prabal family mixture laye umrah par jaye,
9: and
4: HBL freedom account, jahan khwab wahan HBL।
9: 100 FM।
14: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
15: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: FM 100, like us on facebook.com/FM247365।
16: FM 247365।
17: FM 100, 100।

0: It's 7 p.m. The Sound Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL. This program was brought to you by Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja and Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja and
1: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
0: and Tabal family mixture laaye umrah par jaye and
2: HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL
3: 11.99%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%।
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबी सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबी सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
9: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
11: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जाज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त, 1 पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जाज 5G।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
12: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
13: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
0: This program is brought to you by
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
0: facebook.com/fm247365
14: Let's celebrate 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
15: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. 11.9% 11.9%.
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
4: 11.99% 100 FM।
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
6: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
0: This program is brought to you by
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
8: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादेआमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
2: 100 FM।
4: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
5: This program is brought to you by
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
2: FM 247 365 FM 100।
1: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
7: इवनिंग ड्राइव टाइम।

0: This program is brought to you by
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
2: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: 100 FM।
2: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
3: This program is brought to you by
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
3: This public service message is brought to you by FM 100. ट्रैफिक कवानीन और इशारों की पाबंदी कीजिए, इनकी खिलाफ वर्जी काबिले गिरफ्त जुर्म है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur
1: bhul ja. फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: This program is brought to you by
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPR ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
0: This public service message is brought to you by FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए, ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए।
3: facebook.com/fm247365 fm247365।

0: PM. This time check is brought to you by HBL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. This program was brought to you by
1: Purani gaadi chhodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HBL branch chalo ya apply karo online.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: उम्रा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्रा और बेशुमार कीमती इनाम हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन।
4: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
6: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
8: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
9: घर के अफराद और आमदन में तवाजुन
10: हमारी जिम्मेदारी है।
11: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: This is your music.

0: right, जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और मैसेजेस आपके पहुंचना शुरू हो गए। पीर एम इलियास भाई कैसे हैं आप? अयाज अहमद भाई मोस्ट वेलकम, आई एम वेटेड योर शो, वेट कर रहे होंगे आप, और बहुत शुक्रिया, आई लाइक योर ब्यूटीफुल शो। इसके अलावा अयाज भाई आज मैडम नूर जहां का की बर्थडे, अच्छा जनाब, चले जनाब फिर नेक्स्ट गाना उन्हीं का ही मैं प्ले करता हूँ थोड़ी सी देर में। मैडम और एन ईयर का एक गाना वो प्ले कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। गाना कौन सा है वो जरा मुझे बताएं तो सही, एन ईयर के साथ कौन सा गाना गाया? डॉक्टर फकीर भी आ गए मारीपुर हॉक्सबे रोड से और कह रहे हैं आयाज भाई आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम, फिल्म इंतखाब अवैस नाहिद अख्तर बोल हैं, गाते रहो गुनगुनाते रहो, पेशकश है रशीद पटेल। फकीर भाई नहीं करो यार, क्यूशन बनी हुई है, फॉलो करना होता है, पूरा तुमने माहौल बना दिया मीडियम वेव का, दो मिनट रुक जाओ दोस्तों, ब्रेक आ गई 3 मिनट, मिलते ब्रेक के बाद।
1: This program is brought to you by Shokatanam Karachi ki Takleef।
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए, हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा, फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: लाइक अस ऑन
5: Facebook.com/FM247365
6: Active, yummy, adorable, seven.
7: Sit up, got a crush on you.
6: Yeah, yeah, yeah.

जना वेलकम बैक सुन रहे हैं 100 और साथ साथ मैसेजेस पहुंच रहे हैं के चाय स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर रहे हैं 3636 पर। मिसेस फारूक आ गई है। मिसेस फारूक वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज शरीफ है आपके, उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। और गाना पहला ही आपको बहुत पसंद आ गया, कहनी गुड चॉइस, थैंक यू। और संजीदा जी कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हरदिल अजीज शहजादे, वेलकम कह रही है। और रेडियो की तारीफ भी कह रही है, रेडियो हर दौर में कामयाब रहा है, इसको सुनने के लिए एक जगह बैठना नहीं पड़ता, शहर गांव सब जगह की जरूरत रेडियो है। बेटा रेडियो ना हुआ फीडर हो गया, बच्चे के मुंह में डाल के घूम रहे। रेडियो भी है, हर चीज वक्त के साथ बदल रही है। मैंने कहा शुरू में कि वो वाला क्रेज तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी सांसें चल रही हैं। और कह रही है कि भाई पहला गाना पसंद आ गया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, वो कह रहे हैं इलियास भाई, पीर एम इलियास के मैडम जी की बर्थडे, अब पता नहीं है या नहीं है, इनकी बात पर मैंने भरोसा कर लिया क्योंकि मैडम जी के गाने तो मेरे पास होते ही, तो ये गाना उन्हीं को डेडिकेट करते हैं, आप सबको डेडिकेट करते हैं और खास तौर पर पीर एम इलियास भाई आपको भी। और मिसेस फारूक भी कह रही है बिल्कुल आज है, चलें जनाब तो फिर क्या ही बात है। आगाज इस बात से मुझे पहले पता होता तो मैं आगाज ही मैडम नूर जहां के इस गाने से करता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तो इंजॉय करें, मैसेजेस करें 3636 पर।

0: best of 90s, 80s, and today.
1: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100। और अदीला बहन आ गई, सलाम मेरे प्यारे अयाज भाई, कैसे हैं आप? बेहतरीन शो होता है रोज, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। संजीदा आप ही को सलाम, और एक सॉन्ग भी डेडिकेट कर दें, ठीक हो गया जी। और जनाब हमें तानिया हसन भी सुन रही हैं और बैठी हैं दो दरिया पे। अरे क्या बात है जनाब, जबरदस्त वहाँ रेस्टोरेंट भी बड़े अच्छे हैं, तो रोटी शोटी भी खा लेंगे, डिनर विनर हो जाए वहाँ पे। जनाब खुश रहें, जहां रहें खुश रहें। और इसके अलावा हुमा कह रही है सलाम अयाज। वालेकुम सलाम हुमा सिद्दीकी, कैसे हैं आप? पहला गाना पसंद नहीं आया, लेकिन मैडम जी का गाना पसंद आया। हुमा जी सारे गाने अब जरूरी तो नहीं आपको पसंद आए, बहुत से लोग सुनते हैं ना, सबकी पसंद का ख्याल रखना है। अच्छा जनाब, इसके अलावा मिसेस फारूक यानी मुझे उनकी डेथ एनिवर्सरी 27th रमजान याद है। अच्छा जी, हाँ वो मुझे याद है 27th रमजान बिल्कुल, लेकिन इंग्लिश डेट क्या थी ये नहीं पता। ओए, बड़ा सख्त किस्म का मैसेज कर दिया संजीदा जी ने, आपको क्यों नहीं मालूम मैडम की आज साल क्या है? आपका ताल्लुक रेडियो से? अरे भाई मेरा ताल्लुक वालों को, मेरे को रिश्ता थोड़ी हुआ रेडियो से, और मेरा कोई ताल्लुक वो वाला भी नहीं है, होते ना बिल्कुल रेडियो पे निछावर। मैं भाई इंजॉय करने आता हूँ शुरू से लेके आज के दिन तक, बस ये मेरा तफरी का टाइम होता है 2 घंटे, और बात होते हैं ना रेडियो के लिए पैदा हुआ है, उनसे उन जैसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ, और ना कभी आप मुझे समझिएगा। इंजॉय करता हूँ, मुझे अपनी बर्थडे याद नहीं रहती, मैडम की कैसे रही? अब कोई मुझसे पूछे मेहंदी हसन साहब की क्या डेट ऑफ बर्थ है, हराम है मुझे याद हो। आप 2 मिनट में गूगल करके आपको पता चल जाएगा, और फिर आप रुस्तम क्या होते हैं, इसको सब इल्म का पता होता है, तो वो बन जाएंगे। गूगल ने काम बड़ा आसान किया, 2 मिनट में हर चीज का पता चल जाता है। तो भाई फन तफरी सॉन्ग में अच्छे अच्छे कोशिश करता हूँ आप लोगों को सुनाऊं, और रेडियो से मेरा बस इतना ही ताल्लुक है। चले जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं और शामिल करते हैं, आज जरा गाने ना मैंने स्लो स्लो रखे हुए। ओए होए सुंदर सुन रही हैं मैं, सुंदर जी क्या हाल है आपके? ठीक है खैरियत से, लेकिन इतने ओल्ड, आज क्लासिक है ना मंडे वाले दिन, ओल्ड इज गोल्ड, पुराने गाने सुनाता हूँ मैं जरा। आज गजलें रखी हुई ज्यादा स्लो मेलोडियस गाने होंगे, तो इस तरह के गाने भी बड़े लोग सुनते पसंद है, तो उनका भी आज मैंने ख्याल रखा। शामिल करेंगे नैयरा नूर को, और ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है।

0: Volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: लब्बैक اللهم लब्बैक।
4: उम्रा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदे, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्रा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन।
5: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: स्वागत आनंद कराची की तकलीफ।
8: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
9: Active.
10: Yummy.
9: Adorable. Seven. Say I've got a crush on you.
10: Keep your eyes to suno yaad.

जनाब, वेलकम बैक। सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस कर रहे हैं, क्या चॉइस पे टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। अच्छा जनाब, इसके अलावा मैसेज कौन कर रहा है हमें? नौरीन तौसीफ आ गई है। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, की मिजाज कैसे? मिजाज मेरे बिल्कुल ठीक है, सदा हंसते मुस्कुराते रहे। आप भी जनाब, आप भी। आज मेरे नवासे हाशिर बाजवा की भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कहेंगे, हैप्पी बर्थडे। खैर से 5 साल के हो गए हैं। चले जनाब, और बहुत खूब इंतखाब पेश किए हैं अभी तक, खूबसूरत सॉन्ग। नौरीन जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हुमा सिद्दीकी कह रही है कि संजू शहजादे को मेरी तरफ से एक सॉन्ग क्या डेडिकेट कर दें, बिला वजह आपको डांट दिया। मैं तो क्या कहना चाहिए, वो उन्होंने डांट दिया, संजू ने? कोई बात नहीं, डांट दे, खैर है, कोई नहीं। मैं तो सुन लेता, मासूम सा आदमी हूँ, रेडियो पे आता हूँ, सुनता रहता हूँ मैं बातें, क्या कर सकता हूँ। देख लें आप, उमा जी देख लें आप मुझे। एम इलियास फिर आ गए, एम इलियास पीर। सर पीर साहब आपका क्या आस्थाना है क्या है सर, या कोई कास्ट है पीर, या आपसे तावीज लिखवा के लोग जा रहे हैं, क्या है चक्कर क्या है जरा पीर का मुझे बताया तो सही। कराची के हीरो अयाज भाई, अरे सरकार आपका प्यार है मोहब्बत है, सुपर हिट शो और बेस्ट विद यू। अच्छा जी अयाज भाई, नैयरा नूर ऑल टाइम ग्रेट भाई, मुझे लग रहा है इनको पसंद आ गया ये गाना, बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी। मैडम जी की आज बर्थडे, तो फिर आज उनके गाने जरा ज्यादा रखेंगे ना हम अपनी क्यू शीट में। तो जनाब नेक्स्ट ट्रैक, और ये गाना भी बड़ा आला है वैसे।

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस। अच्छा जनाब मधिया आ गई। मधिया जी क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? इतनी तारीफें कर रही हो मधिया, खुश रहे आप? खुश रहे, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे यहाँ पर सीधा सीधा प्रोग्राम करके चला जाता हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं। ये प्यार है आप लोगों का, मैं बता रहा हूँ आपको। एम अतीक के मैसेज आ गए, आज भाई आदाब, आज फिर जबरदस्त शो करने पर आपको मुबारकबाद। अरे सरकार नहीं करे, मैडम का एक नगमा कैसा जादू कर दिया मस्तानी आंखों वाले ने। बेटा तू W11 में बहुत बैठा है, W11 में अक्सर इस तरह के गाने लग रहे होते हैं। कैसा जादू कर दिया मस्तानी आंखों वाले ने, और मस्तानी आंखों का जिक्र किया इमरान भाई गर्मा गर्म चाय लेके आ गए। क्या बात है इमरान भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चीनी कम है ना, क्या बात। और यार सब कुछ बताता रहता हूँ, सूरत हाल क्या चल रही है। अच्छा जनाब नैयरा नूर बेस्ट सिंगर मिसेस फारूक कहनी, भैया आपने बड़ी जबरदस्त बात की, ये बहुत अच्छी बात किया। अच्छा जी, और मैडम जी का फर्स्ट टाइम ये गाना सुना है? अरे बड़ा मशहूर है वैसे, और अक्सर मेरे शोज में चलता रहता है। किस मुंह से तेरा नाम, एक ही मुंह है भाई, कितने मुंह है। अच्छा शायर का भी जो दिल कर रहा है वो लिख रहा है, किस मुंह से, मुंह का क्या करें भाई। अच्छा जनाब इसी तरह का माहौल एक और खूबसूरत ट्रैक में शामिल करता हूँ। अच्छा मैं इससे पहले वो मैं प्ले करूँ, ये गाना इतना मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन पता है उसमें जो झनकार कर दी ना, ओए होए होए, मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। इतना अच्छा गाना, ये देखो आप मुंह से बजाइए, झनकार कुछ ऐसा लग रहा है पानी भर के। कितने अच्छे गाने का सत्यानाश कर दिया, चेक करें।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
2: aur bhul ja. फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकतानम कराची की तकनीक।
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
8: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
7: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम

वन जनाब वेलकम बैक सुन रहे एफ एम 100 और साथ साथ मैसेजेस भी। शेर खान फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू किंग ब्रो, फर्स्ट टाइम एसएमएस किया है। शो इज ऑसम एंड नाइस क्यू शीट, क्यू शीट इज फैंटास्टिक, सॉन्ग इज रोमांटिक। यस सर एग्जैक्टली, आज मलका तरन्नुम नूर जहां की बर्थडे है, मेरे फादर आपका शो सुन रहे हैं। अब्बा जान क्या हाल है। अच्छा पहले ना मोहब्बत होती थी ना तो प्यार से बोलते थे अब्बा जान, ये तो लफ्ज ऑब्सोलीट हो गया, सुनने में ही नहीं आता। डरे पापा बताओ, चाय में डिबो के पी रहे बंदा, मतलब किसने रखा पापा चाय पापा, ये मतलब क्या चलता आ रहा, लोग बोलते हैं मैं क्या कह सकता। लेकिन अब्बा जान में जो दिखे फनाइयत है, पाकिस्तानी फिल्मों में आप देखें अब्बा जान या फिर अब्बा हजूर। यासुद्दीन बलबन मुल्तान से आ गए हैं और कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, पूरी टीम को भी ठीक हो गया जनाब। वालेकुम सलाम। अच्छा जी महा, तो मैं बात कर रहा था फादर की, तो बिल्कुल जनाब शेर खान भाई आपकी तरफ से आपके फादर को मैं अभी थोड़ी देर बाद गाना डेडिकेट कर दूंगा। तानिया हसन जो है ना वो हमें सुन भी रही है, साथ साथ एंजॉय भी कर रही है, बड़ी मेहरबानी सरकार, इतना हौसला इतनी हिम्मत आप मुझे देती रहती हैं, अप्रिशिएट करती रहती हैं, क्या कहने आप। और मिसेस फारूक बस हंसती मुस्कुराती आप मुझे ना बहुत प्यारी लगती हैं। सुंदर जी कैसी हैं आप, ठीक हैं खैरियत से। अच्छा जी अब शामिल करेंगे हम किसको भला। अच्छा जी गाना बड़े दिनों बाद मुझे जो है ना क्यू शीट में नजर आया और मैंने शामिल कर लिया, वरना तो अक्सर वेस्टर्न प्ले करते रहते थे।

0: माय जी, वेलकम बैक सुन रहे FM 100 सलाम आया। सॉन्ग यूं खो गए तेरे प्यार में हम सुना दें। अवशीन जी, यू शीट का थोड़ा ख्याल रखना है ना मुझे, वरना फिर रिक्वेस्ट शो हो जाएगा। वैसे आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सारे इसी तरह के गाने एक से बढ़कर एक। अच्छा जनाब, इमरान भाई हमें मैसेज कर रहे हैं और बहुत तारीफ कर दी इन्होंने, और साथ में इन्होंने भी रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट का तरीका मुझे पसंद आया। कह रहे हैं कि अहमद रुश्दी का गाना, बिल्कुल जनाब वो है सबका, इमरान भाई अहमद रुश्दी के लगता है बहुत फैन है। फुप्पा हमारे प्यारे से, वो तो सुनते रहते हैं, वो तो फैन है ही है, इमरान भाई भी हो गए फैन। चले जनाब, थोड़ी सी देर में इंतजार, थोड़ा सा इंतजार आपने करना है। अच्छा जनाब, इसके अलावा किरण हमें मैसेज कर रही हैं, और किरण जी कह रही है कि सुनती तो रोज हूँ लेकिन मैसेज आज किया। किरण तुम कितनी स्वस्थ चल रही हो, मैसेज करते रहना चाहिए, पता चले कि भाई कौन कौन सा। भाई आज जो है ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग सुनते हैं और मैसेज नहीं करते, तो प्लीज आज जरा मैसेज करके हाजिरी लगाए। सिर्फ नाम लिख दें अपना, कुछ अक्सर ये भी होते क्या लिखें, अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई मैसेज करें तो लिखें क्या, तो आप सिर्फ अपना नाम लिख देंगे, भाई मैं भी अयाज या अयाज भाई मैं पहली दफा सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, तो आप मैसेज कर दें। अच्छा जी, इसके अलावा पीर है मिलियास आ गए अयाज भाई, क्यूटी रूना जी नाइस, क्यूटी ऐसे कह रहे, पड़ोस में रह रही, तुम्हारे जान पहचान है फुल टाइम। लिहाज भाई नहीं करो यार, अयाज भाई मेनाज बेगम का भी बेगम, वो सॉन्ग प्ले कर दें सुपर। अच्छा मैं प्ले कर दें, पूरा उसने रिश्तेदार बना दिया, एक को क्यूटी एक को बेगम, साली और सास रह गई बस, पूरा फैमिली बना लिया भाई ने। लिहाज भाई ऐसा नहीं करो। अच्छा जनाब, मैसेज करने का तरीका मैं बता दूं, खे अच्छा स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। अच्छा जनाब, टाइम चेक और उसके बाद कुछ सेकंड की ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: It's 10 p.m. This time check is brought to you by HPL Zari Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरायालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
2: This program is brought to you by
3: Shaukat Khanum, Karachi की तकलीफ।
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
5: FM 365 FM 100
6: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान,
7: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, पाकिस्तान
8: एक्टिव यमी डॉल्फिन
9: जबरदस्त
0: जनाब, तो शामिल करते हैं अब मेहंदी हसन साहब को, और स्पेशली ये ट्रैक, ये भी आज भी सुने तो अच्छा लगता है।

हुआ जनाब, बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें। पता नहीं हम लोग कहां थे उस टाइम, कहां थे हम लोग उस टाइम। अच्छा जी, मिसेस फारूक कह रही वाकई एक से बढ़कर एक गाना प्ले हो रहा है। मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया। सलाम, शो देर से सुना, लाइट नहीं है। जरी नूर, ये लाइट के मसले बड़े, बस कब सही होंगे, ये इन्हीं मसलों से नहीं निकल रहे। लाइट नहीं है, गैस नहीं है। चलिए बहरहाल, अब तो आदत ही हो गई है, अब तो आदत सी है मुझे। हुमा सिद्दीकी आ गई और कह रही है थैंक्स अयाज, मेहंदी हसन जी को प्ले करने का मेरे फेवरेट है, अब मजा आ रहा है सुनने में। बस आपको मजा आना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात जो है ना मजे की। अच्छा जनाब, हम समझते हैं ना कि आजकल जरा छोटे छोटे गाने बनते हैं, उस दौर में भी बनते थे भाई। थोड़ा सा मैं गाना आपको सुनाने वाला हूँ, रूना लैला जी ने गाया ये, डोंट बी सिली। आए आए।

कर लो बात अब, डोंट बी सिली। कोई बदतमीजी किसी ने की, ये गाना मैंने उसको डेडिकेट कर देना, डोंट बी सिली। ये तो खैर वैसे मैंने आपको सुना दिया कि हर दौर में इस तरह की चीजें जो है वो आइटम बनते रहते थे। लीजिए जनाब, इंजॉय करें ये वाला ट्रैक।

0: रहे जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे FM 100 और साथ साथ मैसेजेस 3636 पर। अच्छा जी, बिजमा कह रही है मैं भी पहली दफा सुन रही हूँ और ये मेरा किसी भी FM पर पहला मैसेज है। बिजमा जी सलूट है आपको, वेलकम कहेंगे। और इसके अलावा जनाब हमें मैसेज कर दिया है आयशा जी ने, आयशा जी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम पसंद कर रही है, सबको सलाम। अच्छा, इसके अलावा एम अतीक आपने दिल तोड़ दिया, हम बड़े मान से मैसेज करते हैं कि हमारे अयाज भाई हमारा दिल रख लेंगे। बेटा मैंने क्या किया मुझे बताओ तो एम अतीक, हमने ऐसी क्या बात कर दी जिससे दिल आपका किरची किरची हो गया, लीरो लीर हो गया, मुझे दसो तो। छोटी छोटी बातों पे जो है ना दिल टूट जाते हैं। गाने लिखे होंगे तो उसके लिए तो मैं एडवांस में माजरा चाह लेता हूँ, क्योंकि रिक्वेस्ट हो नहीं है ना। अब आप भी ढीठ है तो फिर मैं क्या करूँ, मैं क्या कह के थक गया हूँ, मुंह हमारा थक गया है कि दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट शो, मगर ना आराम है हमने सुननी हो, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम आपको ये भी कहेंगे कि आपने दिल तोड़ दिया। कोई बात नहीं, टूटा रहने दो, हर चीज जुड़ी हुई भी अच्छी नहीं लगती। अयाज आयम अरशद मलिक, अरशद मलिक की हाल है तो अड्डा फ्रॉम ठट्टा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सरकार आपके सामने, इसी तरह मैं शिकवे शिकायतें सुनने सुन रहा हूँ मुस्तकिल, लेकिन मैं भी ना फिर फुल इनको देख के मैं भी ढीठ हुआ हूँ, कोई असर नहीं हो रहा किसी शिकवे शिकायत का मुझ पर। अच्छा जनाब, टाइम हो गया है 10:15 यानी 10:15, तो मैं आपको दसता हूँ छोटी सी ब्रेक है एक मिनट की, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
2: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डालें, उनसे उनका बचपन ना छीन। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है, आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
5: Active, yummy, adorable, zabardast. प्यास तो सुनो यार।

हमरा जनाब वेलकम बैक सुन रहे FM 100 अयाज अहमद के साथ और साथ साथ मैसेजेस करें कि HR स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर। और मुझे सुन रही हैं हमारी क्यूट सी प्यारी सी चाची। चाची जी कैसी हैं आप भाई? वो कह रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिजली पानी, ये सही बात कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो हम यूज्ड टू हो गए इन सारी चीजों पर, बस चाची खुश रहे। मैं तो कह रहा हूँ शिकायती बंदे को नहीं होना चाहिए, सबसे अहम बात यह है। लीजिए जाना फुप्पा, अगर सुन रहे हो तो आपके लिए खास तौर पर, और एक और भी अहमद रुस्ती वाले भाई थे उनके लिए भी।

मैं जनाब वेलकम बैक टू एफएम 100 आयाज अहमद के साथ और साथ साथ मैसेजेस भी आप लोग कर रहे हैं। काफी सारे लोग आ रहे हैं जो पहली दफा मुझे मैसेज कर रहे हैं। सिर्फ नाम लिख दिया उज्मा, बस कोई उन्होंने बात नहीं लिखी। उज्मा जी वेलकम कहेंगे। चलें जी, उज्मा ने भी हमें मैसेज कर दिया। तो चाची क्या कह रही है? कह रही है कि पानी जैसे बन जाओ जो हर जगह अपना रास्ता बना लेता है। अरे वाह वाह वाह वाह चाची, क्या बात है, क्या कहने। अच्छा जनाब, इसके अलावा इरफान भाई बहुत शुक्रिया मैसेज करने का, इतनी सारी दुआएं देने का, क्या कहने। अच्छा जनाब, इसके अलावा उम्मा सिद्दीकी कह रही है, अयाज संजू कह रही है आप गुस्से में हो मालूम। अरे नहीं भाई, मैं कहाँ गुस्से में, गुस्सा मैं घर पे छोड़ के आता हूँ, गुस्से वाली कोई चीज ही नहीं मुझे। प्लीज आप लोग जो है ना माइंड ना किया करें, मैं जैसे मैसेज में समझ आ रहा था मैं वैसे पढ़ देता हूँ, और गुस्से वाला तो आदमी मैं हूँ ही नहीं। अंजुम लेलानी, लेलानी क्या हाल है आपके, ठीक है खैरियत से हैं? नाम सही पढ़ रहा हूँ कि गलत तो नहीं पढ़ रही है? ये भी सुन रही है और हाई कर दिया मेरे ख्याल से। हाय जी, हाय क्या हाल है तुम्हारा। अच्छा जी, मैडम जी की आज बर्थडे है लोग कह रहे हैं, तो फिर एक और गाना शामिल करते हैं, और ये गाना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है मैडम का, वैसे तो सारे ही अच्छे हैं। आज आप लाइव नहीं आ रहे सर, अंजुम लेलानी क्या करोगी लाइव देख के, बस एंजॉय करें आवाज से।

क्या बात है जनाब, क्या बात है मैडम जी के तो हर गाने ही जो भी सुने आप बड़ा ही सुरीला लगता है, और इस गाने की तो क्या ही बात है। फूफा जी ने वो नहीं कर दिया डायरेक्ट, जज्बाती हो गए। फूफा कैसे हो आप, ठीक हो, खैरियत से, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, गाना भी याद है, फिल्म का नाम भी याद है, हर चीज याद है, क्या कहने, क्या ये होती है बात सारी इंटरेस्ट की। और डाई हार्ट फैन है अहमद रिजवी साहब की, और डाई हार्ट फैन की बात करें तो गयासुद्दीन बलबन भी फैन है मेहनाज जी के, और ये जो नेक्स्ट ट्रैक है ये गयासुद्दीन बलबन आप ही को डेडिकेट कर देता हूं मैं।

भाई जना वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ जना मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं। अच्छा थोड़ी सी बात मैं क्रिकेट की करूंगा कि पाकिस्तानी टीम तो फिलहाल नहीं खेल रही लेकिन CPL वेस्ट इंडीज में हो रहा है बारबाडोस में और वहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ना वो खेल रहे हैं। तो शदाब और मुकीम यार इन दोनों ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, खासतौर पर मुकीम भाई यार इसको इस लड़के को चांस देना चाहिए। और इसके अलावा सेंचुरी बना ली सादात ने जो ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तानी टीम के, नया बच्चा बड़ा अच्छा खेल रहा है यार, बड़ी अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग की। इसको पूरा नाम मुझे नहीं आ रहा, किसी को पता हो तो मुझे इधर सेंड कर दें। तो पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है अच्छा खेल रहे हैं यार और शदाब की टीम जो है वो उसने टूर्नामेंट जीत लिया, तो एक छोटी सी अपडेट मैंने सोचा आपको दे दूं। अच्छा जी हसीन भाई आ गए, हसीन भाई कैसे हो, सलाम भाई, जबरदस्त सॉन्ग, मजा आ गया, लाजवाब, बड़ी मेहरबानी, यही प्यार, ये मोहब्बतें और सॉन्ग जो हम बना रहे होते क्यू शीट, तो आप लोगों का ये प्यार मोहब्बत जब मिलता है तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। नाइस सॉन्ग आपकी क्यू शीट की बात ही अलग है जरी नूर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पीर साहब आ गए, पीर एम इलियास अयाज भाई, टुडे यू प्लेइंग हार्ट टचिंग म्यूजिक, थैंक्स भी कह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। इसी बात पर ये वाला ट्रैक मैं आपको डेडिकेट करता हूँ।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: वेलकम बैक दोस्तों. और जनाब उमर भाई ने क्या खूबसूरत बात लिख के भेज दी. कह रहे हैं पेट्रोल को 150 तक 76 ईयर्स लगे, यानी 150 तक पहुंचने में 76 हैं, 76 साल जो है वो लग गए. और 150 से 400 तक, 150 से 400 तक सिर्फ 2 साल लगे. फिर ना कहना हमारा वजीर आजम काम नहीं करता भाई. वाह भाई बात अच्छी की. क्या सिर्फ वाकिया थे तुम्हारा, मैंने सोची नहीं. 150 जो है 76 ईयर लगे. गुफरान भाई तशरीफ ला चुके अपनी सीट पे. तो गुफरान भाई वो कह रहे हैं उमर भाई कि 150 तक 76 ईयर लगे पेट्रोल को पहुंचने में. 150 से 400 तक पहुंचने में सिर्फ 2 साल. क्या बात कर दी यार. बाकी इस बात पे नोट करें भाई. और अब तो नोट ही खत्म हो गया हमारे पास.

बात जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। अच्छा जनाब, जो मेहंदी हसन के फैन है, बहुत सारे फैन है, उमा जी भी जैसे बता रही थी कि अब मजा आ रहा है उनको मेहंदी हसन के गाने सुन के, तो उनके लिए मैं आपको एक न्यूज देता चाहूंगा। अगर आपने लाइव मेहंदी हसन के गाने सुने, मेरे मतलब है उनके गाने ट्रिब्यूट किए जाएंगे, वो तो खुद तो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, तो 14 नवंबर को, काफी टाइम है वैसे, काफी टाइम है। और अहमद जहांगीर और मोहम्मद अली खान साहब, मोहम्मद अली खान भी क्या सिंगर है, काफी सारे जो सॉन्ग्स हैं इन्होंने गाए हुए हैं मेहंदी हसन साहब। तो ये मैं आपको बताऊंगा, आपने कहां जाकर जो है इनके गानों को सुनना है। अच्छा जी, पीर अमिल यास आने, अयाज भाई आपका शुक्रिया। अरे सरकार शुक्रिया की क्या बात है, आपका अपना शो है ये तो, अड्डा जाती शो है गचौरी साहब। आपको गाना पसंद आया, सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे। मेहंदी हसन साहब की बात हुई है तो क्या ख्याल है मेहंदी हसन साहब का एक ट्रैक हो जाए।

0: बात। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
2: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहतरीन। मुनशियात खरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ हैं, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एल वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान

भाई जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। मैं इतनी सारी तारीफें करते हैं, मैं सीरियसली बहुत ज्यादा खुश होता रहता हूँ आपके मैसेज पढ़ पढ़ के। अच्छा जी, और हुमा क्या कहनी, हुमा कहनी है आज भाई इंग्लिश सॉन्ग प्ले कर रहे हैं आप, उर्दू दोनों को एंजॉय। मैं इंग्लिश तो आज कोई गाना मैंने प्ले नहीं किया हुमा, कौन सा चैनल लगा लिया तुमने? सारे उर्दू गाने पाकिस्तानी फिल्मी गाने मैडम जी के, मेहंदी हसन साहब के, इसमें से अंग्रेजी कहां से आ गया? आज सिर्फ उर्दू ट्रैक, कल कोशिश करेंगे जरा इंग्लिश ट्रैक भी शामिल करें। अच्छा जनाब, इसके अलावा उमेर हमें मैसेज कर, उमेर साहब क्या हाल है आपके, ठीक है खैरियत से हैं? अच्छा, ड्राइव कर रहे हैं और हमें सुन रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सरकार गाड़ी साइड में पार्क करके मैसेज करेंगे। चलती गाड़ी में मैसेज अगर कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है, और अगर ड्राइवर है और आप पीछे आराम से बैठे हैं या आगे आराम से बैठे हैं फिर ठीक है। अच्छा जनाब, इसके अलावा नताशा, उमर जी क्या हाल है आपके, ठीक है खैरियत से? नताशा जी सुना है, बड़ी स्वीट सी लेडियां, बस भी शुगर वाले सारे इनसे दूर रहे, ज्यादा स्वीट है मुझे लग रहा है। तो जी इनको गाना हम डेडिकेट कर देते हैं और वो है कैसे,

क्या कहने जनाब, मैडम जी का तो हर गाना मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक से बढ़कर एक गाना है। अच्छा जनाब नवीद नदीम, आपका छोटा भाई सुन रहा है, शकील भी सुन रहा है, शेफ साहब, क्या इसमें मैसेज लिखा है? मुझे खुद समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने एज इट इज पढ़ दिया, आपको समझ आया तो मुझे भी बताइएगा। ये सारे लोग सुन रहे हैं या एक ही आदमी है या दो आदमी है, तीन है, कौन है ये? शेफ अलग है, शकील अलग है, नवीद नदीम अलग है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, बहुत अच्छा शो रहा आज का भी, प्लेलिस्ट कमाल की बनाई है नौरीन तौसीफ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। उमा जी कह रही है आज मेरा भाई घर में इंग्लिश सॉन्ग लगाए हुए हैं फुल वॉल्यूम में, इसका मतलब ना इंग्लिश समझ में आ रही ना उर्दू, ये कोई भी सही नहीं सुन रही। एक चीज सुनो एक वक्त में, या तो रेडियो पे उर्दू गाने सुन लो या घर में इंग्लिश लगाए। मैं शुक्र इंग्लिश लगाया, उसमें बंगाली लगा लेता तो हम क्या कर लेते, लेकिन बहरहाल सुनती रहो, इंजॉय करती रहो, यही कहेंगे आपसे। मिसेस फारूक, मिसेस फारूक आप हंसती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यार बहुत सारे गाने रह गए यार प्ले करने से, लेकिन मैं थोड़े थोड़े सुना देता हूँ जरा, और वो है कैसे जरा। हाय हाय क्या बात थी इस गाने की भी।

0: बैठ जाना, उस दौर में महंगाई नहीं थी ना, इसी तरफ तवज्जो रहती थी। अब तो आदमी को दिन रात ये सोच रहा है घर में दूध पानी बत्ती सब कुछ है कि नहीं, इन चक्रों में फंसा दिया। क्या पुराने लोगों ने एंजॉय किया भाई, वाह वाह वाह वाह। अब ये देखो, ये गाने में भी देखे,
1: मेरा जीवन तू है, मेरा सपना तू है।
0: चेक कर लें इसका सोच।

हाय हाय हाय, ये है इनकी मंजिल। आज अगर बिजली का बिल 50,000 इनके आ जाता फिर मैं पूछता ऐसे गाने बना के दिखाओ जरा। बस जनाब वक्त वक्त की बात होती है, आराम सुकून से शायरी होती रहती थी और लोग जो है ना बस दिल की बातें जो है ना शायरी के चक्कर में कह जाते थे। ये अच्छा भाई।

वेलकम बैक। ये रात शबनम में हमारी प्यारी सी आंटी को बहुत पसंद है ये ट्रैक और उम्मीद करता हूँ कि आंटी सुन रही होंगी और आंटी को पसंद आया होगा। मैसेजेस आपके आना शुरू हो गए जबकि मैंने सवाल के बारे में कुछ बताया नहीं। वैसे भी कुछ देर पहले हमारे प्यारे से शहजादे अयाज भाई शो करके गए हैं द किंग ऑफ एफएम 100 अयाज अहमद। तो अयाज भाई अभी आपको एक गाना डेडिकेट करूंगा, आप जरूर सुनिएगा। सवाल की जानिब जाते हैं और हम अक्सर जब खुश होते हैं तो हंसते हैं। मुख्तलिफ किस्म की आवाजें होती हैं हंसने की मगर तरीका कार एक ही होता है हंसने का। तो आपने ये बताना है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी आवाज बिल्कुल इंसान की हंसी की तरह होती है। आपने बता दे रहे यार भाई आप ही बताएं। इस तरह की आवाज किसकी होती है? तो ये हमने सवाल कर दिया है कि वो कौन सा जानदार है जिसकी आवाज जो है इंसान की हंसी की तरह होती है। ये इसका जवाब देना है हमने 3636 पर। और सबसे पहले फीता काटा है पीर मोहम्मद इलियास साहब ने, कह रहे हैं नदीम भाई मोस्ट वेलकम, आई होप योर गुड शो, वेरी गुड इंग्लिश, तसरम खानम इस सॉन्ग प्ले कर दें प्लीज। तसव्वुर खानम का कौन सा गाना भाईजन? जरा ये तो बताइएगा। बेस्ट विशेज विद यू, थैंक यू पीर मोहम्मद इलियास साहब। तसव्वुर खानम का गाना अयाज भाई के शो में कहते थे वो लगा देते पाकिस्तानी मूवी का कोई भी गाना, तो लिहाजा ये आप कल फरमाइश कीजिएगा, अभी आप पॉप गाने की फरमाइश कर सकते हैं। सलाम की बात करिए, कैसे हैं भाई आप? स्वीट से लाला को, संजीरा आपी को, मोज को, मानूर को और तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। एस गुल, आज एस गुल आई हैं तो इसका मतलब है लाला भी आएंगे। नदीम भाई लाला के लिए अच्छा सा सॉन्ग धमाकेदार किस्म का पख्तो सुंदर लगा दीजिएगा। लगा देंगे। और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी नाम मुझे लग रहा है कि नहीं लिखा लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। हाँ लिखा हुआ है भाई। सलाम के बाद कहा है नदीम ने, मैं हूँ सनम। सनम तेरी कसम, तेरी उम्मीद है कि आप और आपके वाले साहब बिल्कुल ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। पिछले मंडे को मैं सुन ना सकी लेकिन आज आप फिर से पश्तो गाना सुना दें। हाय अल्लाह जी, गाने के बोल हैं खबर शो कले और गाना अयूब लाला को मेरी जानिब से डेडिकेट कर दीजिए। सब सुनने वालों को प्यार भरा सलाम, सदा सलामत रहें और खुश रहें। सनम आपकी जानिब से बिल्कुल डेडिकेट कर देंगे। फिलहाल हम जो डेडिकेट कर रहे हैं वो अयाज भाई जान आपके लिए गाना है। एलो फड़ो कितने गया ए ये रहा।

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: Welcome back, bambina mina. प्यार प्यार से मेरे तरफ देखो, इस गाने का मतलब है उर्दू में, है ना? सही बताया या गलत बताया, तो मैं समझाऊं। खैर जी, हमारे अयूब लाला ने कहा है, जिगर एस गुल एच गुल और सनम का बेहद थैंक्स सॉन्ग बहुत अच्छा था। वो कौन सा जानदार है जिसकी आवाज बिल्कुल इंसान की हंसी की तरह होती है? ये सवाल मैंने फ्लोट किया हुआ है। और ए रशीद सोमरो साहब दाऊद गोट से कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम में पहली बार शिरकत कर रहा हूं। आए हाय, सही भली कर आया हो और खुशी हो रही है। प्लीज फिल्म अयाज का, अयाज तो चला गया, ये गाना प्ले कर दें। नाही न्याजी की आवाज में आए, सो स्वीट यार। पहली मर्तबा आपने, यानी कि समझ रहे हैं ना, आपने मैसेज किया हमारे शो में, तो आप हमारे नए लिसनर हुए। लेकिन हमारे रशीद साहब, हम आपको बताते हैं कि मेरे शोज के कुछ पैटर्न्स होते हैं, मूड होते हैं। मंगल वाले दिन मैं ओल्डी गोल्डी क्लासिक शो करता हूं, जिसमें पाकिस्तानी मूवीज के पुराने और बहुत पुराने ट्रैक चलाता हूं, उसके अलावा नहीं चलाता। इसी तरह जुमेरात को गजलें चलती हैं या मेलो ट्रैक्स चलते हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और उसके अलावा इधर उधर के गाने चलते हैं जो कि अभी चल रहे हैं, तो लिहाजा ये मूवी का गाना है और आपने पहली मरतबा शिरकत की है, आपका कसूर भी नहीं है, आपको पता भी नहीं होगा भैया, तो हम आपके लिए चला देंगे, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाँ सही समझे, सही समझे। हमारी प्यारी सी स्वीट सी बहन सीमा सायम आ गई है, कह रही है सलाम नदीम भाइयो, सलाम टू एवरीवन भाइयो, 100K लिसनर्स बेवफा है। हाय अल्लाह जी, क्यों? एक पुराने लिसनर्स को भूल जाते हैं, हम आपको नहीं भूलते। कल मैंने आपको सॉन्ग डेडिकेट करने का कहा, आप भूल गए, कल मैं आया ही नहीं था। झूठी, कल तो मैं आया नहीं बच्चा, कल मैंने छुट्टी मार ली थी और 22 को मेरी बर्थडे है। मेरी बर्थडे में भी देखूं कि मेरे भाइयों को मेरी बर्थडे याद होता है कि नहीं, अगर नहीं क्यों, तो मैं कुट्टी हो जाऊंगी। मुझे अपनी आवाज में सॉन्ग प्ले करके सुनाएं। मेरी प्यारी सी बहना, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे आपने ये क्यों लिखा? ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा मैसेज आया हो, हमने रीड ना किया हो या फरमाइश ना चलाई हो? हैं जी, जी हैं जी। और कल जो है आपने मेरा ख्याल है बगैर सुने मैसेज कर दिया था, यानी कि समझ रही है ना आप। अच्छा जी, जिकर सनम को भी जावेद अख्तर साहब का गजल प्ले करके दें। ओए होए, मतलब नाम में इजाफा कर दिया ना, बिल्कुल कर देंगे जनाब। अच्छा जी, जरीन नूर मेरी प्यारी सी बहन कह रही हैं कि गई हुई थी इसीलिए शो नहीं सुन सकी। मेरी प्यारी सी बहन, जीती रहो, मुस्कुराती रहो, काम तो काम होते हैं लेकिन हम याद करते हैं गाये बगाये सबको। संजू भी गायब है 2 दिन से 3 दिन से, यानी कि समझ रही है ना। हाँ अच्छा जी, सलाम, हम ना आ गई हैं और फर्स्ट टाइम आई हैं, हम ना कैसी हो? मैसेज किया है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हमना, आप कैसी हैं? कौन सा गाना सुनेंगी ये बताइएगा भाई। हमारे नए लिसनर्स के लिए तो खुसूसी तौर पर गाना चलाएंगे हम, यानी कि समझ रही हैं। अच्छा भाई, एस गुल ने थैंक्स कह दिया है, जीती रहो मेरी प्यारी सी बहन, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो, यानी कि समझ रही हो। मैसेज तो भाई बहुत सारे आए हुए हैं, मगर जाना है एक ब्रेक की जाने।
1: facebook.com/fm247365 fm247365

0: वेलकम बैक कहेंगे सोनियो। मैसेजेस आप क्या रहे हैं 3636 पर, और अभी हम आपको लेकर चाहते हैं एक बहुत जबरदस्त ट्रैक जॉन एब। ये ट्रैक हम स्पेशली डेडिकेट करेंगे जनाब हमारी प्यारी सी नई लिसनर आई है जिसका नाम है हमना। उसके साथ साथ सीमा साहिब ने वैसे तो मेरे आवाज में गाया है, लेकिन सीमा साहिब को भी हम ये डेडिकेट करेंगे और उसके साथ साथ इनाम उल हक को भी करेंगे। उसके साथ साथ हम ये और किसको डेडिकेट करेगा यार, अकबर खान दिलबर जैना को भी करेगा जनाब। तो इन तमाम के लिए गाना हम चला रहा है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। एल्लो फड़ो, प्यारा गाना है, सुना हुआ आपने।
1: आओ लेके चलूं तुमको,
0: हाँ ले जा रहे हैं भाई,
1: बचपन की उन गलियों में,
0: बचपन की गलियां
1: जहाँ रंग है,
0: जहाँ रंग है
1: यार है,
0: हाय हाय हाय,
1: फुर्सत है,
0: फुर्सत भी
1: शायद कहीं इसमें तुमको तुम मिलो,
0: तुमको तुम मिलो,
1: चलो कहूँ तुमसे मैं,
0: चले भाई चले।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको और आपने मेरी कहानी सुना और उम्मीद करता हूं कि आप सबको अपनी अपनी कहानियां याद आ गई होंगी। म्यूजिक ट्विस्टर में मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने जाने हो। आपका और मेरा साथ है जनाब एक बजे तक और एक बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी और सारी है। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए कि चाय लिखिए और अपना प्यारा सा नाम प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। सलाम की बात कह रहे हैं मोहन लाल यूके से यानी कि उमरकोट से। नदीम भाई आप कैसे हैं? ओ जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। मेरा एक सवाल है, ओए ओए ओए इम्तिहान शुरू हो गया भाई, अगर हो सके तो प्रोग्राम में शामिल कर लीजिएगा। सवाल शामिल कर कि वो कौन सा मुल्क है जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? ये तो हमको पता है। और प्लीज प्ले सिंधी रैप सॉन्ग। ओके भाईजन रैप सॉन्ग वो भी सिंधी। ओके ठीक उमरकोट से मोहनलाल। अच्छा मोहनलाल आपने जो सवाल पूछा है ये मैं पूछ चुका हूं भाई और इसका जवाब मुझे बता क्या मतलब। नदीम भाई मुफ्त कमाते रहो, समझ नहीं मैं समझी नहीं मैं एस गुल मेरा बच्चा एस गुल मुझे बताओ ये मैंने कब कहा कि मुफ्त कमाते रहें? हो सकता है मैं रवानी में कुछ ऐसी बात बोल गया हूं लेकिन याद दिलाया मुझे मैंने क्या बोला था। और एने भाई सॉन्ग चलाने का के लिए बहुत थैंक्स। ये कौन है भाई? एच गुल है कौन है? नाम लिखा करे भाई साथ साथ। एक ओएसटी की फरमाइश की है किसी ने मगर नाम नहीं लिखा इसलिए हम पूरी ही नहीं करेंगे। ओ मिर्जा साहब आ गए ने जनाब, क्या बात है क्या बात है। फ्राम गुजर खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब, वेलकम खुशामदीद। आइए आइए आपका ही था इंतजार सबको। जिस जानवर की हंसने की आवाज इंसान से मिलती है वो है सही कहा आपने, इसका उर्दू का नाम लिख दिया और सही लिखा है इन्होंने, जवाब सही दे दिया मतलब। और वाह वाह जबरदस्त आला क्या कहने दोला सानू प्यार दिया नहीं। भाई हमारे मिर्जा साहब का मैसेज पहले आया हुआ था, हमने पढ़ा देर से, खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और हमारे जिगर एस गुल एच गुल और सनम का बेहद थैंक्स, सॉन्ग बहुत अच्छा था। दोबारा मैसेज आ गया लाला का, सनम को भी। अच्छा भाई ये तो हो गया ना मैसेज, हाँ सनम को भी डेडिकेट करेंगे लाला, डोंट वरी डोंट वरी। हमारी प्यार इसी चाची भी आ गई है, कह रही है सलाम नदीम। और चाची ने हमेशा की तरह दुरुस्त जवाब दे दिया है, वेरी गुड चाची। बहुत दिनों के बाद दिल को ठंड पहुंचा दी आपने, ठंडक पहुंच गई है कि हमारी प्यारी सी चाची जो है कमिंग बैक, सवालों का जवाब भी दे रही है अब चाची। ये हुई ना बात, अकबर खान क्या कहता है यार। लास्ट टाइम जब अकबर खान आया था तो बड़ा मजा आया था उनके, मतलब वो मुश्ताक यूसुफी साहब के इकतबास लाए थे, कह रहे अस्सलाम वालेकुम मैंने भाई बखैर राख ले कैसे मिजाज हैं आपके, हम भी आपके महफिल में शामिल हो गया है तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम वालेकुम अस्सलाम। और मुश्ताक यूसुफी साहब की कोई चीज ले आए भाई। कहते हैं चहल कदमी के दौरान एक मोहतरमा से ताल्लुक हो गया, उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने जवाब दिया किताबें लिखता हूं। चुनाचे उन्होंने कुछ किताबें बराए मुताला ली। एक हफ्ते के बाद जब दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने पूछा किताबें कैसी लगी? वो खातून कहने लगी शक्ल से तो आप इतने लुच्चे नहीं लगते। अजय खुद ही हजरा क्या खूबसूरत अंदाज में सामने वाले की बेइज्जती हुई है। वो खातून कहने लगी शक्ल से तो आप इतने लुच्चे नहीं लगते। किताबों के बारे में पूछा था जबकि
अगर मियां बीवी की आपस में बन जाए तो फिर सारे खानदान की उनसे नहीं बनती। बिल्कुल दुरुस्त कहा हमने। हंसी क्यों आई? क्यों, ऐसी मिसालें मेरे सामने बहुत हैं। जिस मियां बीवी की आपस में बनती होगी ना, खानदान वाले उनके खिलाफ होंगे। यार बहुत खूबसूरत खूबसूरत आप जो है वो पैराज भेजते हैं, मजा आ जाता है। अच्छा, आपने सवाल का जवाब भी दिया है। वाह वाह भाई वाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया भाई शहजादे आपने। यार अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है यार, जो भी जवाब दे रहा है दुरुस्त जवाब दे रहा है, ये बड़ी बात है भाई। यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा, अभी इन्होंने इनका एक और इकतबास है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारी प्यारी सी चाची का हाय, चाची चाय पीते हुए चाचा के साथ, वाह वाह वाह। चाची कह रही है मेरा जवाब दुरुस्त है या गलत है? चाची दुरुस्त है, कभी ऐसा हो सकता है कि आप गलत जवाब दें? यानी कि समझ आएंगे ना। अच्छा भाई, सलाम की बात कर रही है नदीम, एक सॉन्ग सुनवा दीजिए। अफशा कह रही है, अफशा सिर्फ गाना ही सुनेंगी बस और कुछ नहीं। कुछ आदमी इंसान बोलता है। नदीम कैसे हैं आप? तमाम सुनने वालों को सलाम, आपका शो बहुत बुरा है, एक गाना चला दीजिएगा। इतना लिखने में क्या हो जाता है। अफशा समझ रही हैं आप? हाँ नदीम भाई, जब मैंने एक सॉन्ग के लिए थैंक्स कहा था तब आपने दुआ दी, खुश रहो आबाद रहो मुफ्त कमाती रहो। समझ रहे हो ना, खुश रहो ये कहा था आपने, ऐसा सुना मैंने। मैंने मुफ्त कमाने पर नहीं कहा था, मैंने तो दुआएं दी थी। मुफ्त कमाने की कोई बात हो ही नहीं सकती, टॉपिक भी कोई ऐसा नहीं है आज तो। आई सो स्वीट, मेरी प्यारी सी बहना जरीन नूर ने दुरुस्त जवाब दे दिया है। अरे वाह यार, माशाल्लाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस सवाल का जवाब इतना पॉजिटिव आएगा। ज्यादातर तकरीबन आप सबने, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, ये मेरी कहानी। इसी कहानी पे आपको थोड़ा सा फरंगियों वाला गाना भी सुनाते हैं। अल्लो फड़ो।

0: Like us on facebook.com/FM247365.
1: Welcome back, Otalia Ballerina, and I hope you like the song. Messages आपके आ रहे हैं. अच्छा जनाब, सलाम की बात कह रहे हैं. अरे हाय, आज बड़ी देर हो गई यूसुफ भाई, वरना तो आपके शुरू शुरू में मैसेज आ जाते हैं. खैर, हमारे यूसुफ भाई बाबू इससे आ गए हैं. सलाम की बात कह रहे हैं आंटी को, चाची को, अरूसा को, आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम. उन्होंने कहा नदीम भाई, आज आपकी भाभी की बर्थडे है, जरूर से उन्हें विश कर दें और एक अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा. शुक्रिया. अरे क्या बात है. अच्छा भाई, हम अपनी प्यारी सी भाभी को यानी मिसेज यूसुफ को विश करेंगे और गाना हम थोड़ी देर में डेडिकेट करेंगे, वो भी यूसुफ भाई की जानिब से, क्योंकि आपके लिए स्पेशली गाना ढूंढेंगे ना यूसुफ भाई. गाने का समझ आया ना? हाँ तो भाई, वैसे विश तो करेंगे ही करेंगे, 12 बजे के बाद करेंगे भाई. हाँ, एक और विशिंग भी है 12 बजे के बाद. और अस्सलामुअलैकुम नदीम भाई, सवाल का जवाब. अच्छा जनाब, इन्होंने जवाब जो दिया है ना वो मैं बोल देता हूँ, क्योंकि सब ने उस जानवर की आवाज सुनी हुई है. इन्होंने क्या, हॉर्स यानी कि घोड़ा. घोड़े की आवाज इंसान की हंसी के साथ मिलती है. यार क्या बात है यार, मोहनलाल भाई जबरदस्त. अब आप लोग जो जो जानवर लिखेंगे मैं सबका जवाब देता रहूंगा, ठीक है ना, सही हो या गलत हो. अदीला मेरी प्यारी सी बहन आ गई है. सलाम नदीम भाई, गुड शो. संजीदा आपी को सलाम. संजीदा आपकी, संजीदा आपी और हमारी संजू कहाँ गायब हो? लगता है फिर से कोई मेहमान शेमान आ गए हैं उसके बहुत ज्यादा. खैर, वैसे ना तो अदीला ने कहा ना ही जरीन ने कहा कि संजू को जो है गाना डेडिकेट करें, मगर हम कर देंगे आप दोनों की जानिब से भी और अपनी जानिब से भी. क्या ख्याल है, जरा अपना ख्याल का इजहार कीजिए, यानी कि समझ रहे हैं ना आप. और जनाब सलाम भाइयों, मैं फरीदा बुरहानुद्दीन हूँ, कैसे हैं आप, की तबीयत कैसी है? ओके ठीक. चाची को मेरा प्यार भरा सलाम कह दीजिएगा. जिस जानवर की हंसी इंसान से मिलती है वो
2: बंदर है.
1: हमारे को लग रहा होगा बंदर भी लग रहा होगा, घोड़ा भी लग रहा होगा. सोचे जरा, सोचे और सोचे,
2: मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है.
1: और अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब भी हमारे आ गए हैं और क्या कहते हैं भाई, इनका मैसेज ढूंढना पड़ेगा. हाँ कहाँ गया. वाजिब अल एहतराम नदीम अख्तर भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम. हमेशा की तरह एक ही फरमाइश, सजाद अली या नूरजान की, और पेशगी

वेलकम बैक कहेंगे भाई, मेरा माही आ गया। ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। मैसेजेस कर रहे हैं आपकी चॉइस पे, आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर। एंड जनाब सवाल जो मैंने आपसे पूछा है, बताएंगे कि वो कौन सा जानवर है जिसकी आवाज बिल्कुल इंसानी हंसी की तरह होती है। कोई बकरा कह रहा है, कोई बंदर कह रहा है, और कोई कह रहा है घोड़ा। अच्छा जनाब, हम ना कह रही हैं कि हम ना हूं भाई जान, प्लीज ओएसटी प्ले करो। बहुत ही आला, हम ना हमने आपको फर्स्ट टाइम गाना डेडिकेट कर दिया और आपने फौरन फरमाइश फेंक दी। मुझे फर्स्ट टाइम मैसेज किया है, बैलेंस नहीं है बस, हाय अल्लाह जी। चलो तुम्हारा मैसेज आ गया है, हम आपके लिए चला देंगे दो, ना एक नहीं दो दो है।

0: ओके तो हम ना प्यारी जी बहना डोंट वरी सही हमारे सलीम मेमन भाई आ गया है। कहते हैं सलाम सुने हो चाची को हमारा खास सलाम संजीदा जी और शरारती गुफरान भाई आप के करीब हैं तो उनको भी मेरा सलाम। खैर गुफरान मेरे करीब नहीं है मगर आपका सलाम पहुंचा देंगे, संजू को भी पहुंचा देंगे। अगर सुन रही हुई तो ये बहुत जरूरी है कि सुन रही हो तो हैं जी ते हैं जी। अच्छा जनाब अकबर साहब जो है इन्होंने एक मैसेज किया था कहाँ गया वो हाँ कहते हैं हम पाकिस्तानी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते, ये तो फैक्ट है। सोते हुए शख्स से भी पूछ लेते हैं सो रहे हो क्या
1: भाई बात बढ़िया
0: वैसे फैक्ट है। आपकी ऐसे आंख लगती है सो गए क्या उठाकर और यूसुफी साहब का एक और इन्होंने इकतबास भेजा है कि लिखते हैं कि जब उनकी शादी हुई और रुख्सती का वक्त आया तो दुल्हन की मां बहनें रोने लगी मगर उनकी बेगम खामोश थी। उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि आप भी रो लें क्योंकि दुल्हन रुख्सती के वक्त घर वालों से जुदा होती हैं तो रोती हैं मगर वो ना रोई। फिर घर का दरवाजा आया, हमने कहा अब तो आप दरवाजे पर आ गई हैं अब रो लें मगर वो फिर भी ना रोई। फिर गाड़ी के करीब आकर हमने फिर से कहा मगर वो ना रोई और गाड़ी में बैठ गई। और फिर जब हम अपना सहरा उठाकर गाड़ी में बैठे और उन्होंने हमें देखा तो फिर खूब फूट फूट कर रोई अपने ही बारे में लिख रहे हैं यानी कि समझ रहे हैं ना आप इस तरह से होता है इस तरह के कामों में कि उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। भाई अकबर साहब बहुत खूब अच्छे लगते हैं मुझे आपके मैसेजेस। अच्छा भाई मिर्जा साहब कहते हैं लव यू नदीम पाजी शानदार जानदार आला सॉन्ग डेडिकेट करने का ओ मैं क्या तुसी ग्रेट हो ओ क्या बात है सुने हो शुक्रिया। इनामुल हक मेरा शहजादा आ गया कह रहे अस्सलाम वालेकुम भाईजान कैसे हैं आप। आंटी को चाची को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है और बिल्कुल दुरुस्त जवाब भी दिया है उन्होंने। क्या बात है इनाम भाई छा गए आप तो। इसी बात पर हम जाएंगे एक ब्रेक की जाने
2: It's 12 midnight. This time check is brought to you by FPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
3: Music Twister.
4: What's the music?
3: With any

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास पड़ते हो सर्दियों की शामों में। इनामों लग गया, हमने लास्ट मैसेज पढ़ा था और अब हम आपको लेकर चलते हैं एक और मैसेज की जानिब। चाची द ग्रेट है आप, जीती रहे मुझको। चाची आपको एक गाना डेडिकेट करेंगे आपकी जानिब से, अजरा शब्बीर जी को डेडिकेट करेंगे। और मिर्जा साहब कहते हैं नदीम भाई अली अजमत वो सिंगर हैं जिनका उस दौर के टॉप सिंगर्स में शुमार होता था, लेकिन अब भी किसी से कम नहीं है। अच्छा, अली अजमत की क्या बात है, उन्होंने 20-25 साल लगा दिए इस फील्ड में माशाल्लाह से। लेकिन मैं अपनी जाती बात बता रहा हूँ, उनके 2-3 गानों के अलावा मुझे कोई गाना उनका पसंद नहीं है, क्योंकि वो मेटल, हैवी मेटल टाइप के सिंगर हैं और इसकी एक अपने मतलब लिसनिंग शिप है, लोग पसंद करते हैं बहुत। लेकिन मुझे इनके 2-4 गाने ही बस इतने अरसे में, एक तो ये है जिसमें मेरा माही आ गया, बाकी नो डाउट अली अजमत एक पाकिस्तान का बड़ा नाम है। और प्रोग्राम को शामिल करने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है तहे दिल से हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब ने, भाई बहुत शुक्रिया। तो बस इसी बात पर हम जाएंगे जनाब एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब की जानिब से आप सबको, और हमारी जानिब से जनाब इरफान मेमन को, सायरा मेमन को, मेमन तमाम कजन्स को, क्योंकि सज्जाद अली की आवाज है तो किड़किड़ तो होना ही चाहिए ना।
1: किड़ किड़ किड़ किड़ कैन किणा गण कैन किणा गण किगरा किड़ किड़ किड़ किड़ किड़ किड़ किड़ किड़।

वेलकम बैक आएंगे सुने हो आप सबको किड़ किड़ किड़ किड़ कह कड़ा कड़ कह इसका मतलब क्या है वैसे पता है आपको गायब है वो हो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में तामीर अली छोटी अनाया नदीम भाई के कैसे हैं आप शो बेहतरीन है बहुत बहुत शुक्रिया तामीर भाई और छोटी जी अनाया शो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया और जनाब हमारे अलीमुद्दीन साहब ने शुक्रिया अदा कर दिया है लेकिन अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट सी बात करनी है हमने और वो क्या करनी है जनाब

Happy birthday! तैयारी सी सीमा साइम आपको और मिसेज यूसुफ सालगिरह मुबारक हो। FM 100 की जानिब से सालगिरह बहुत बहुत

Mrs. Yusuf. Salgira Mubarak. भाई सीमा साइम हमारी प्यारी सी बहन और हमारी प्यारी सी बहन मिसेस यूसुफ की आज है बर्थडे, तो उनको हमने बर्थडे विश किया। उम्मीद करते हैं विशिंग अच्छी लगी होगी, यानी कि समझ रही है ना। इसी बात पर जनाब चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानेब, और ये ट्रैक डेडिकेट करेंगे आप सबको अफशा की जानेब से। तो अफशा तो अड्डा गाना एल्डो फड़ो।

0: सलीम जावेद की आवाज, और उम्मीद करता हूँ आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा। मैसेजेस कर रहे हैं आपकी चॉइस पेज, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड कर रहे हैं 3636 बार। सवाल मैंने आज आप लोगों से ये पूछा है कि वो कौन सा जानवर है जो जिसकी आवाज बिल्कुल इंसानी हंसी की तरह होती है। ये ऐसी हंसी भी नहीं लेकिन होती है। अच्छा भाई, मिर्जा साहब कह रहे हैं बल्ले बल्ले जियो जियो द ग्रेट सजाद अली, हे किड़कड़ा। और कह रहे नदीम भाई, धुआंधार प्लेलिस्ट बनाकर हमारे लिए पेश करने का बेहद शुक्रिया हम सबकी जानिब से। जीते रहो, मुस्कुराते रहो। यार मौसम कैसा है गुजर खान का, जरा दस होते सही। कराची में तो अंत की गर्मी पड़ना शुरू हो गई है बहुत ज्यादा। ओह जिंदगी साथ है, आदाब, कैसे हैं? शो सुन रही हूँ, हाय अल्लाह जी। जब जिंदगी साथ हो, या आज आपने लिखा नहीं, जिंदगी साथ है, लेकिन आज हम कह रहे हैं जिंदगी साथ हो। तो बस जिंदगी आ गई है तो फिर होना चाहिए ना कुछ जिंदगी वाला गाना, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो जिंदगी आपके लिए आज एक गाना होगा, बताइएगा कैसा गाना। और सवाल का जवाब है, ओहो क्या बात है सलीम मेमन भाई, आज तो आपने भी जवाब दुरुस्त दे दिया। हाय हाय हाय, डेडिकेट कर दें किसको, इनाम की फरमाइश जनाब। हाय हाय हाय हाय, गाना भी अच्छा है यार, मुझे बड़ा पसंद है। चलाएंगे चलाएंगे, जरूर चलाएंगे, लेकिन इससे पहले कि आपका गाना चलाएं, हम चलाएंगे भाई। यूके से हमें मैसेज किया था सही, यूके वाला मैसेज था ना, मैं मैसेज पहले चेक कर लूं, क्योंकि मैसेज चेक करना भी बड़ा जरूरी है। पता चले भाई किसी और ने गाया, हमने गाना किसी और के नाम कर दिया। मोहनलाल भाई ही थे भाई, वो मोहनलाल ने एक साईं सिंधी गाने का फरमाइश किया था, तो वो गाना हम चला रहा हूँ। और ये ट्रैक हमारे जितने भी सिंधी बहन भाई सुन रहे हैं उन सबको डेडिकेट करेंगे मोहनलाल की जानिब से। हल्लो फड़ो
1: वाली हिन सिंध ते का एड़ी वराण वरे जो सुख्या डुबरा पाण में भाकुर विजूं भरे ही कायम रहे कयामत ताईं मोहबत कड़ न मरे पंजल थियूं न परे जैसी जेरा आयो जान में।

Welcome back! 할래! 할래! Beautiful track! And I hope you all have a lot of fun. And your message jo hai, wo aa rahe hai 3636 par. And aapko ek aur baat bataye, Sami saab aa gaye hain. Aaj hi hum isko itna yaad kar rahe the aur aakhirkar aa gaya. कह रहे सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप सब? सुनने वालों को सलाम। बिजी था कुछ कामों में मैं, इसलिए कुछ दिन से शो नहीं सुन सका। वो आप जितने बिजी थे ना, वो गुफरान भाई ने बता दिया था कि आप किन कामों में बिजी थे। जाहिर है शादी होने वाली है, बिजी तो होंगे आप। यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हम जानते हैं आप बिजी है, लेकिन फिर भी हम आपको याद कर रहे थे। अरे वो कह रहे हैं कि शो बहुत मिस कर रहा हूं, मगर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। भाई वो हमारे गुफरान भाई कह रहे हैं कि आप मोबाइल से गायब हैं, कटे हुए हैं फुल टाइम। अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि मैंने गुफरान भाई को कहा था कि समी को एक मैसेज तो मारो, कहां गायब है यार, आपकी मसरूफियत ही जानना चाह रहे थे। तो खैर आप आ गए, लंबी उम्र है माशाल्लाह से आपकी। कह रहे व्हाट्सएप बंद है भाई, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अच्छा जनाब समी, थैंक यू वेरी मच, पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप इतने दिनों के बाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिर्जा साहब कह रहे हैं, नदीम भाई गुजर खान दा मौसम दिन नॉर्मल है और रात को काफी ठंड सर्दी और हल्की फुल्की धुंध भी पड़ रही है। खेस के बगैर रात नहीं गुजर दी है, मतलब गर्म मोटी चादर। भाई क्या बात है भाई, बहुत खूब, यहां तो बैंड बजा हुआ है भाई, एसी चल रहे हैं फुल टाइम। अच्छा भाई सीमा साय मेरी प्यारी सी बहना कह रही है, नदीम भैया थैंक यू, जीती रहो मेरी प्यारी सी बहना, इसका मतलब मैं आज सुन रही हूं। इमाम बख्श सयाल टंडोजाम से सही आ गए हैं, कह रहे हैं कि प्लीज प्ले। भाई प्ले नहीं हो सकता इमाम बख्श साहब, अभी वैसे ही इतनी सारी फरमाइशें बाकी हैं जो कि हमने पूरी करनी है, पता नहीं हो पाती भी है या नहीं हो पाती। तो भाई अभी हम जिस ट्रैक की जानिब जा रहे हैं, इमाम बख्श साहब है सियाल, वो कह रहे हैं बिना के तमाशा, बना के तमाशा, सॉरी बिना के तमाशा चला दें। कहां से बना के तमाशा, कहां से है इसमें 25-26 में बना के तमाशा। अच्छा आपको पसंद है, अच्छा भाई इमाम बख्श साहब आपकी ऐसी जबरदस्त फरमा, मतलब वो सिफारिश आ गई है कि हमने यहाँ पर काम करना है भाई। तो आपकी फरमाइश अगर पूरी नहीं करेंगे तो गुफरान भाई फिर हमें गाने कहां से ला कर देंगे। तो आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे जनाब अब हम। और शहजादे अनीस अकबर बादशाह के दरबार से आए हैं। अनीस भाई कह रहे हैं सलाम नैने भाई और तमाम लिसनर्स को भी प्यार भरा सलाम, लगता है आपका काम खत्म हो गया है। गुफरान भाई ने ना अपना काम कंप्लीट कर लिया है, इसलिए पंगे लेना शुरू कर दिए उन्होंने। अनीस भाई कह रहे हैं सलाम मैंने भाई और तमाम लिसनर्स को भी प्यार भरा सलाम, शो अच्छा जा रहा है और सिंधी सॉन्ग ने शो को चार चांद लगा दिए हैं। अरे सही आपको पसंद आया ना, ये हुई ना बात अनीस भाई। बस आपको सिंधी सॉन्ग अगर पसंद है तो हम जब भी चलाएंगे अनीस भाई को जरूर याद करेंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो जनाब अभी हम जा रहे हैं हमना की फरमाइश, हमारी नई लिसनर है प्यारी सी बहन हमना, ने एक फरमाइश की थी, तो हमना तुम्हारी फरमाइश एलो फड़ो। बारिश नहीं, बारिश जैसी आवाज ही सही भाई कराची में।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब। नश्तर सुना आपने, क्या नश्तर मारा है भाई, ओएससी है ये। और इसके साथ ही एक और नश्तर मार देते हैं भाई, इमाम बख्श सियाल साहब, आपकी फरमाइश पूरी इस वजह से हुई है कि गुफरान भाई ने कहा भाई चला यार, और चार फरमाइशें पीछे छोड़ दी हमने, तो आपकी फरमाइश पर जरा सुनिए।

0: होए होए वेलकम बैक बना के तमाशा तुझे सब उन्हें तमाशा बनाया जाएगा क्या गला है क्या गला है जबरदस्त भाई जबरदस्त
1: वेलकम बैक बना के तमाशा जनाब ये भी हो गया है मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर और सवाल मैंने पूछा है कि वो कौन सा जानवर है जिसकी आवाज बिल्कुल इंसानी हंसी की तरह होती है माशाल्लाह से आप लोगों के जवाब आ रहे हैं और ज्यादातर बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं दुरुस्त भी आ रहे हैं और समी भाई किससे बदला लेने के चक्कर में है मिर्जा शुजा साहब पूछ रहे हैं मिर्जा साहब है तो समी साहब ही बदसणगे यानी कि समझ रहे ना आप सदीम अमन कह रहे हैं नदीम भाई और गुफरान भाई मुझे लगता है कि समी भाई शादी के बाद काफी कहीं शादी के बाद कहीं एफएम से गायब ही ना हो जाए अक्सर लोग शादी के बाद गायब हो जाते हैं सलीम अमन भाई ये तो शादी से पहले गायब हो रहा है सही कह रहा हूं ना गुफरान भाई भी यही कह रहे हैं शादी से पहले ही मतलब आप समझ रहे हैं ना ये आप ही हैं आप जैसे मासूम लोग कहां होते हैं ये शादी के बाद भी जो है एफएम पर ही है यानी कि समझे बात को और सभी कह रहे हैं कि मैं कोई गायब नहीं हुआ हूं सलीम भाई बस एक बार न्यू मोबाइल आने दो यानी कि समझ रहे हैं ना आप अभी जहेज में तो नहीं आ रहा बताना सच से बताना कह रहे हैं कि कोई गायब वायब नहीं हो रहा सभी का मैसेज आया है गुफरान को सुना रहा हूं मैं कह रहे बस एक बार न्यू मोबाइल आ जाए यानी कि समझ रहे ना आप मैं क्या कहीं जहेज में तो नहीं आ रहा आदाब आदाब हाँ मुंह दिखाई पे मोबाइल दे देना भाभी को शायद कोई अल्लाह का बंदा दे दे गिफ्ट में हाँ सलाम गुफरान भाई आपको सलाम भी कह रहे अल्लाह का बंदा अल्लाह की बंदी अल्लाह की बंदी होगी अच्छा ये आगे बढ़ते हैं और एक और ट्रैक की जानिब जा रहे हैं जिंदगी हमारे साथ है और हम जिंदगी के साथ हैं तो ये जिंदगी को डेडिकेट करेंगे और इसमें भी जिंदगी साथ है और इसके साथ ही साथ पीर मोहम्मद इलियास साहब की भी फरमाइश पूरी हो जाएगी ठीक है ना जी तो जिंदगी के लिए ए वाला गाना चल जा भाई

वेलकम बैक कहेंगे। तसर्रुफ़ खानम का फरमाइश किया था पीर मोहम्मद इलियास साहब ने और जिंदगी इसमें थी तो इसलिए हमने जिंदगी को भी डेडिकेट किया, यानी कि समझ रहे ना। मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर। मिर्जा साहब कह रहे हैं वाह वाह जबरदस्त, क्या कहने हैं भाई, एकदम अचानक बैक एरा में ले गए हैं आप जियो जी। तसव्वुर खानम का आवाज थी, गाना भी अच्छा था, ये प्राइवेट गाना भी है फिल्मी गाना भी है, दोनों मिक्स है इसलिए हमने चला दिया। और जनाब जनाब आज अभी एक्टिव हुआ हुआ है तो मैंने बोला यार इसकी एक्टिवेशन का भरपूर फायदा उठाया जाए। अच्छा भाई समी का मैसेज आया, कह रहे गुफरान भाई आप मेरे मुंह पर एक आईफोन मार दें। आपको पता है इसने अपनी चप्पल पे क्या लिखा हुआ है? नहीं पता ना आपको, उस पर आईफोन ही लिखा हुआ है। तो इसको दोबारा मत कहना। चले खैर जी, इसी बात पर हम जाएंगे एक और ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक हम हमारी प्यारी सी एक शहजादी बहना है जिसका नाम है जरीन नूर, और एक और मेरी प्यारी सी बहना है जिसका नाम है अदीला। इन दोनों की जानिब से संजू को हम ट्रैक डेडिकेट करेंगे। कहां गया ट्रैक भाई? ये रहा एल्लो फड़ो।

Welcome back, beautiful track, and I hope you like it. Adila और जरीमूर की जानिब से ये track था संजू के लिए. और आगे बढ़ते हैं जनाब. पीर मोहम्मद इलियास साहब का मैसेज है. नदीम भाई, थैंक यू सो मच, नाइस सॉन्ग. ओह माय गॉड, यू वेलकम जनाब. हमारी नई लिसनर आ गई है जनाब, फरियाल. फरियाल कैसी हैं आप? खैरियत से? ये तीसरी मरतबा आपका मैसेज आया है और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है और कहेंगे मैं शो सुन रही हूँ. थैंक यू वेरी मच. समी भाई, आपने मोबाइल के आस में ही एक बार भाभी को अनजाने क्या लिखा. यार तुम्हारे मैसेज के हिज्जे करने पड़ेंगे. वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लिहाजा फौरन से पेशतर एक और ट्रैक की जानिब जाना है. मगर हमारे लाला जी जो है, अयूब लाला सर, आपका गाना, आपकी फरमाइश सर आंखों पर, वो जरूर चलेगी. डोंट वरी. हाँ जी, पहले जरा तेज तेज से गाने चला रहा हूँ. तो जनाब अभी जिस ट्रैक की जानिब जा रहे हैं, ये ट्रैक की फरमाइश की थी हमारे प्यारे से सलीम बेमन भाई ने, और उन्होंने कहा था कि ये ट्रैक जनाब डेडिकेट कर दूं खसूसी तौर पर इनामुल हक साहब को, हुजैफा आसिफ को. तो आप दोनों के लिए गाना एलो फड़ो.

वेलकम बैक इंडिया बाय ब्यूटीफुल ट्रैक आपको सुनाया, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सलीम अमन साहब शुक्रिया था, एक मैसेज ही कर देते हैं यार। इमाम बख्श सयाल ने जैसे मैसेज किया है टंडो जाम से सही, वो कहते हैं नदीम भाई गुफरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। गुफरान भाई शरारतों पर आए हुए हैं। वक्त गम में मुकाबला सख्त है, बहुत सख्त है, तो लिहाजा थोड़ा सा गाना हम चलाएंगे भाई हमारे प्यारे से समी के लिए। और समी ने फरमाइश की थी, समी भाई ये आईफोन की जगह फिलहाल इस गाने से काम चलाओ। आपके लिए ट्रैक चल रहा है, चल रहा है, बेफिक्र रहो ठीक है। और पूरा नहीं चलाएंगे क्योंकि टाइम बहुत महदूद सा रह गया है।

है ना, है ना, है ना, है। और मैंने फरमाइश पूरी कर दी आपकी, उसके साथ एक और फरमाइश। ये ट्रैक जनाब हम डेडिकेट करेंगे हमारी अजरा शब्बीर जी को, हमारी प्यारी सी चाची की जानिब से।

वेलकम बैक कहेंगे सोने और उसके साथ ही हमारे प्यारे से समी भाई मैं बहुत माजरत चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा हंसी मजाक में जिस बात पे आ गए थे तो आपने प्लीज माइंड नहीं करना है, आप हमारे भाई हैं और आपसे मजाक करने की वजह सिर्फ ये है मेरी और गुफरान भाई की कि आपसे हमें बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है और अगर इस मोहब्बत और प्यार में कोई गलती हो गई है हम दोनों से तो हम दोनों आपसे माजरत चाहेंगे, ये बस प्यार और मोहब्बत समझिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और उसके साथ साथ ये जो आपका की शादी का सिलसिला कार है इसमें आपको आपकी अगर खुदा ना खासा कोई मुश्किलात हो तो अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। अच्छा जनाब अब आपसे इजाजत चाहनी है और जाते जाते एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक हमने डेडिकेट करना है हमारे प्यारे से अयूब आफरीदी लाला ने जावेद अख्तर साहब की आवाज में एक गजल नुमा गीत है वो डेडिकेट करने के लिए कहा था सनम को और एच गुल को और एस गुल को, तो उन तीनों के लिए आखिर में हम प्यारा सा ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मुलाकात आपसे होगी कल, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और लाला आपके लिए गाना हेलो फड़ो।

0: फिर वही आएगा। क्या वैसे कभी कभी ग्लन, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना इंसान की कि इंसान घूम फिर के फिर वो एक जुमला या एक बात को एक लफ्ज घूम फिर के फिर वो कहीं ना कहीं घूम के वो फिर घूम फिर के वो बात आ जाती है जहन में।
1: नहीं वो है ना कि वो शमाए महफिल की तरफ जाती है, वो वहीं घूम फिर के उसी सामने आ जाती है शमाए महफिल, तो वो वाली कहानी हो गई।
0: बिल्कुल हकीकत, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ख्याल में कुछ क्या ख्याल, अगर मूड है थोड़ा सा गुनगुनाएं जरा सा हमारे सुनने वालों को लाइव, वहां से स्वीडन से आप लाइव सुना दें तो गुनगुना के जरा सा कुछ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बल्कि ही सुनाता
0: हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या फिर तो बात ही जबरदस्त है जी।
1: तो गुस्ताखी माफ, और अगर कोई भूल चुक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, आप भाई आप तो आपसे भूल चुके कैसे हो सकती है आप तो।
1: अरे नहीं भाई, तोबा तोबा तोबा, लेकिन सुनिए तो ये अच्छा, अब ये सवाल तो भाई रह गया कि क्या मैं अपने अब्बा का वर्जन सुनाऊं या अपना जो मैंने पड़ोस मुल्क की फिल्म में जो गाया था वो वाला वर्जन सुनाऊं।
0: पहले अब्बा वाला वर्जन सुनाए थोड़ा, फिर अपना सुनाए।
1: अच्छा ठीक है ठीक है। तू जो कुछ भी नहीं है ये माना के मैं जवान है हसी है निगाहों में ये दिल झूमता है निगाहों में तू है न जाने मोहब्बत राहों में क्या है, न जाने मोहब्बत की राहों में क्या है, राहों में क्या है ये दिल बद कुमार नजर को यकीन ये दिल बद घुमा नजर को यकीन है ये माना कि मैं फिर जवान है हसीन तू जो नहीं कुछ भी।
0: क्या बात है, खूबसूरत ग्रैंड जबरदस्त, वाह वाह वाह, याद ताजा कर दी आपने अपने डैडी की, याद ताजा कर दी, वाह वाह वाह जबरदस्त
1: भाई, थैंक यू सो मच,
0: बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत।
1: और ये आपकी बदौलत है कि आप जो है ना इंस्पिरेशन बने हैं।
0: अरे बिल्कुल, मैं असल में पता मैं और मैं ये मैंने गाना निकाला भी हुआ है आपकी, उसके बाद फिर हम ये गाना यही गाना जो है आपकी डैडी का ये प्ले भी करेंगे, हम ओरिजिनल फिल्म भी प्ले करेंगे। अच्छा अब वो उस वर्जन पे आते हैं जो आपने पड़ोसी फूल की फिल्म के लिए गाया आपने,
1: वो उसका मैं हल ये वो उसका मैं अंतर ऐड कर दूंगा।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो जो नहीं के बाद आता है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: मुझे फिर रुला जाओ सितम करने वाले कहीं से तो आ जाओ कहीं से तू आ जाओ आँखों में तेरी सूरत बसी है तेरी तरह तेरा गम भी बसी है तू जो नहीं कुछ भी नहीं जी।
0: क्या बात है जबरदस्त, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अच्छा ग्लेन मुझे ये बताएं कि देखिए माजी का म्यूजिक क्या था जबरदस्त, वो म्यूजिक जो वो आज भी हमें हम सुनते हैं हमें बहुत इंजॉय करते हैं अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जो आज ही की बात है, मगर आज अब रिसेंटली अब इतना म्यूजिक क्यों नहीं बन रहा, अब म्यूजिक पे यहां इतना काम क्यों नहीं हो रहा, क्या वजूहत है इसकी
1: भाई। म्यूजिक आपने कहा कि म्यूजिक क्यों नहीं बन रहा, मैं जरा सा इख्तलाफ करूंगा, म्यूजिक उससे कहीं ज्यादा बन रहा है लेकिन अब रू नहीं है।

खचपट के तेरा आधी मुलाकात हो गई। और जनाब एक खूबसूरत शेर हमें भेजा तानिया से, कहती मुद्दत हुई यार की आई ना खबर, लगता है नामा पर रकीबों से जा मिला। क्या बात है भाई, जबरदस्त बाबा, बहुत खूबसूरत। और वक्त जो है वो 2:00 तकरीबन 52 मिनट हो चुके हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं भाई, यूर लेजेंडरी पर्सन। अरे मैं कहां लेजेंडरी यार, लेजेंडरी तो आप हैं उजैर, आप यार लेजेंडरी, मोस्ट लेजेंडरी पर्सन है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। और अब आते हैं, अच्छा मुझे खुशी पता है इस बात की कि आज आप मुझे सुन रहे हो, मेरे साथ मौजूद हो, बाबा मजा आ गया। वाकई यकीन करें, मैं नो डाउट बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है कि उजैर मद्दी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। और हुमा क्या कहती हैं जी, शोभजी खत के कागज को खुशबू से तर किया जाता था पहले, फिर खत लिखा जाता था, और समवन स्पेशल के लिए आपने कभी लिखा ऐसा खत? अरे मैंने बहुत सारे खत लिखे ऐसे, उस वक्त बहुत सारे समवन थे, बल्कि समवन के सम ऑल थे उस वक्त, बहुत सारे थे, पूरे पाकिस्तान में थे, खुद कफील थे उस जमाने में, हम खुद कफील है ना। और जनाब अब आते हैं हम एक और खूबसूरत ट्रैक शामिल करते हैं, और ये है कौन सा,

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिबिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।